0: श्रोताओं, सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए अनमोल विचार।
1: आशावादी दृष्टिकोण का प्रयोग आप अपनी प्रगति के लिए कर सकते हैं, अपनी सफलता के लिए कर सकते हैं। हम निराश हो जाएं तो सफलता को पाने का हमारा लक्ष्य भी धूमिल हो जाता है। यदि हम में आशा है तो हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। हमें उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद की एक किरण भी शेष हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। बस जरूरत है तो हमें हर एक काम में आशावादी रहने की।
0: ये था अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए संवेद स्वरों में मातृवंदना।

0: तृप्ति शक्या के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:55 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें नवजात बछड़ों में अतिसार, इसके उपचार व इससे बचाव के संदर्भ में। बछड़ों के पैदा होने के 4 से 5 दिन बाद से लेकर 3 माह तक की जो उनकी उम्र होती है, वो बछड़ों के जीवन काल की बीमारियों की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अवधि होती है। बछड़े पैदा होने के लगभग 3 से 4 सप्ताह तक रोग प्रतिरोध के लिए खीज द्वारा प्राप्त इम्यूनोग्लोबिन पर निर्भर रहते हैं। यदि खीज द्वारा यह क्षमता किन्हीं कारणों से उन्हें नहीं मिल पाती तो ऐसे में बछड़े बीमारियों से लड़ने में असमर्थ हो जाते हैं। इसीलिए किसान भाइयों, अक्सर आप लोगों को सलाह दी जाती है कि शुरू का जो दूध होता है, जिसे हम खीस का दूध कहते हैं, वो बछड़ों को ज़रूर पिलाएं, क्योंकि इस दूध में एंटीबॉडीज होते हैं और ऐसे तत्व होते हैं जो कि बछड़ों को कई सारी बीमारियों से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। जहाँ तक अतिसार का सवाल उठता है, अतिसार सामान्यतः बछड़ों में सबसे पहले असंक्रामक रूप में प्रकट होता है, लेकिन तुरंत ही ये संक्रामक रूप धारण कर लेते हैं। इसके प्रमुख कारणों में विभिन्न जीवाणु, विषाणु, कॉक्सीडिया एवं एस्कैरिस आदि शामिल हैं। ये अलग अलग या एक साथ भी संक्रमण कर सकते हैं। प्रभावित बछड़ों में गोबर या मल पतला या पानी जैसा तथा पीला या भूरे रंग का हो सकता है। कभी कभी मल में रक्त भी मिला हो सकता है। बाद की अवस्था में इसमें श्लेष्मा मिश्रित भी हो सकती है। प्रभावित बछड़े दाना पानी लेना कम कर देते हैं तथा कमजोर हो जाते हैं। बछड़ों के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण उनकी त्वचा खुरदुरी हो जाती है, आँखों की चमक कम हो जाती है, वे सुस्त हो जाते हैं, उनके बाल झड़ने लगते हैं। ये सारे जो लक्षण हैं, इसी से आप पता कर सकते हैं कि आपके बछड़े में अतिसार का प्रकोप हुआ है। इस अवस्था में बछड़ों में निमोनिया भी बहुत जल्दी पैदा हो सकता है। इन लक्षणों के पैदा होते ही बछड़े के मल की जाँच कॉक्सीडिया तथा कीड़ों के लिए करवानी चाहिए। जहाँ तक उपचार का सवाल है, अतिसार दिखाई पड़ते ही बछड़ों को 1-2 दिन तक यदि संभव हो तो दूध अलग से पिलाना बंद कर दें, क्योंकि आंत श्लेष्मा में उत्तक क्षय के कारण लैक्टोज शर्करा का पाचन नहीं हो पाता। इस अवधि में मांड आप दे सकते हैं। जीवन रक्षक घोल देकर पानी की कमी को रोका जा सकता है। जीवाणु जनित अतिसार की संभावना होने पर एंटीबायोटिक्स या सल्फा औषधियाँ भी दे देनी चाहिए। इसके लिए आप पशु चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। जहाँ तक अतिसार से बचाव का सवाल है, बछड़ों को खीस पैदा होने के 3 से 4 घंटे के अंदर थन से ही पीने दें, फिर 36 घंटे के अंदर 5 से 6 बार खीस पिलाएं। बच्चे को आवश्यकता से ज़्यादा दूध न पीने दें। उन्हें अपने शरीर के भार के 1/10 भाग से कम दूध की आवश्यकता होती है। यदि बछड़ा थन से दूध ना पीता हो तो उसे हल्का गुनगुना दूध ही पिलाएं। दूध हमेशा निश्चित अंतराल पर ही दें। कमज़ोर बछड़ों पर विशेष ध्यान दें। बछड़ों की रहने की जगह हवादार हो तथा प्रतिदिन कीटाणुनाशक घोल से इन जगहों को साफ करते रहें। जब दूध या कोई आहार बंद करना हो तो उसे धीरे धीरे घटाएं तथा दूसरे आहार को धीरे धीरे बढ़ाएं। इन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप बछड़ों को अतिसार से बचा पाएंगे और पशुपालन से लाभान्वित हो पाएंगे।
0: अभी आप सुन रहे थे एग्री टिप्स कार्यक्रम। विषय था बछड़ों में अतिसार व बचाव। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को है। अब से कुछ ही क्षणों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वे 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार समय सीमा से पहले दर्ज मामलों के संबंध में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुच्छेद साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस की हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम एलोटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच दल में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह में पहली स्थिति रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताया है और कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इकाई ने नागरिकों को केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन के उप विदेश मंत्री हुआ चेनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी की दृष्टि को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हो गए हैं। पहले एक दिन के लिए निर्धारित ये चुनाव अब आज से 10 अगस्त तक 3 चरणों में होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिलाओं की पैरा शॉट पुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 5वें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:10 हुए हैं। अब सुनिए जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी बम्बुका शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। इसी बीच ये जलयान दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा तथा इसकी वापसी आज ही दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और इसी बीच ये जलयान दोपहर 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और इसकी वापसी आज ही शाम 3:30 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी।

हटबे शहीद बेब की यात्रा पर आज दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और इसकी वापसी आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज शाम 5:00 श्री विजयपुरम से छूटेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 5:30 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी।

एमवी हटबे, स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सुबह 8:30 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराजदीप की यात्रा पर कल दोपहर 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। इसी बीच ये जलयान दोपहर 2 बजे शहीद द्वीप की यात्रा करेगा तथा इसकी वापसी उसी दिन शाम के 3:30 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रंगत स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर 30 तारीख को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और इसकी वापसी उसी दिन दोपहर 2 बजे उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। ये था जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम इंद्रधनुष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी दोस्त श्रीविद्या। श्रोताओं, आज का हमारा शीर्षक है बहार। हर सवेरा हमें ये विश्वास दिलाता है कि बीता हुआ समय चाहे जैसा भी रहा हो, आने वाला पल नई उम्मीदें लेकर आता है। जीवन की राह में जब आशा, विश्वास और मुस्कान साथ हों, तो हर दिन एक नई बहार बन जाती है।

फूलों से सजा बाग जितना सुंदर लगता है, उतना ही सुंदर वो मन होता है जिसमें प्रेम, स्नेह और अच्छे विचार बसते हैं। एक मीठी सी मुस्कान और दो अच्छे शब्द किसी के दिन को यादगार बना सकते हैं। आइए जीवन को भी ऐसे ही खुशियों और अपनेपन की खुशबू

दोस्तों, जीवन की सबसे अनमोल बहार अपनों का साथ और उनका प्यार है। रिश्तों की गर्माहट हमें हर कठिन समय में आगे बढ़ने का साहस देती है। जो लोग अपने संबंधों को प्रेम और विश्वास से सींचते हैं, उनके जीवन में खुशियां हमेशा खिली रहती।

0: तो श्रोताओ, बहार हमें यही संदेश देती है कि जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। उम्मीद का एक छोटा सा दीपक भी अंधेरे को दूर कर सकता है और एक सकारात्मक विचार पूरे दिन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो आइए हर दिन को मुस्कुराकर स्वीकार करें, अपने रिश्तों को सहेजें और अपने जीवन में प्रेम, विश्वास तथा अच्छी सोच की बहार बनाए रखें। इसी शुभ विचार के साथ अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रही थी श्री विद्या। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान की 313वीं कड़ी।

हे राक्षस राज, तू बड़ा अभिमानी है। मैं तो रघुनाथ के सेवक का सेवक हूं। यदि प्रभु के अपमान का विचार न होता तो मैं तुझे धरती पर

अटककर तेरी सेना का संहार करके तेरी स्त्रियों सहित सीता जी को यहाँ से ले जाता, किंतु ऐसा करना मेरी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। जो जीते जी मृतक के समान है, उसे मारने से क्या लाभ? उल्टी दिशा में चलने वाले कामी, कंजूस, मूर्ख, दरिद्र, बदनाम, अत्यंत वृद्ध, चिरंतन रोगी, हर पल क्रोधी, भगवत विद्रोही, वेद और संतों का विरोध करने वाले, केवल अपना पेट भरने वाले, पर निंदक और महापापी, ये 14 प्रकार के प्राणी जीते हुए भी मृतक के समान होते हैं। बस यही सोचकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। तू अब ऐसे वचन न बोल जिससे मेरा क्रोध और भड़क उठे। अंगद के ये वचन सुनकर रावण क्रोध से कांपने लगता है। सोचता है, इस वानर का काल आ पहुंचा है। श्री राम के प्रति अवमानना के शब्द सुनकर अंगद ने दांत किटकिटाकर घोर गर्जन के साथ अपने हाथ धरती पर पटके तो भूचाल सा आ गया। रावण के सभासद एक दूसरे पर गिर पड़े। रावण के जो मुकुट धरती पर गिर पड़े, उन्हें अंगद ने उठाकर उस दिशा में फेंक दिया जिधर श्री राम थे।

अभी आप रामचरित मानस गान की 313वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह और रविंद्र साठे तथा संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:40 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम वतन के गीत।

0: वतन के गीत कार्यक्रम के तहत अभी आप कुछ देशगान का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:50 हुए हैं। आइए सुनते हैं मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं के लिए कोई विशेष सूचना नहीं है। मछुआरों को मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार के तटीय इलाकों में वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर हो सकता है, जिस कारण मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। ये था मौसम का हाल। और अब लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद यानी 7 बजे सुनिए जन सूचनाएं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन का समय रहेगा 7:05 पर। 7:15 पर विविध भारती मुंबई से सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। ठीक उसी समय प्राइमरी चैनल पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम देशरागनी। प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम सुगम संगीत के तहत सुबह 8:30 पर कलाकार होंगे सलमा आगा और जगजीत सिंह। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का समय रहेगा 9 बजे। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप उषा विजय कुमार का कर्नाटक शैली में गोटो वाद्यन सुनेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल का समय रहेगा सवेरे 10 बजे। दिन के 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1337वीं कड़ी आप सुन पाएंगे। आनंद लीजिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत का दिन के 11:30 पर। तेलुगु कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12 बजे, जिसमें आप सुनेंगे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर चर्चा। 12:30 पर आप आनंद ले पाएंगे मलयालम कार्यक्रम विषय आधारित फिल्मी गीत तथा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर चर्चा और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। दोपहर 1:10 पर आप सुन पाएंगे सुगम संगीत, जिसमें फनकार होंगे प्रद्युम्न शर्मा और शीलाधर। आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर हमारी सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारी कार्यक्रम जारी रहेगी, जिसके तहत 2:30 पर आप आनंद ले पाएंगे नॉनस्टॉप म्यूजिक का तथा 3:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो आप सुन पाएंगे। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसके अंतर्गत चर्चा का विषय रहेगा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। शाम 4:40 पर कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। ये थे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:55 पर संस्कृत में समाचारों का प्रसारण किया जाएगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम, प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। नीट प्रकरणे छात्राणां विरोध प्रदर्शनावधौ कथितारक्षकैः कृतानि कार्याणि अधिकृत्य विपक्षदलानां कोलाहलात् ह्यः संसदः उभे सदने लोकसभा राज्यसभा च स्थगिते अभवताम्। लोकसभायां ह्यः सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन

स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा 1.4

मिलीमीटर हुई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 86% और न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 30.5 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय का समय रहा 5:06 और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:46। और अब एयर इंडिया से प्राप्त सूचना। दिल्ली से आ रहा विमान संख्या 2937 दिन के 11:00 श्री विजयपुरम पहुंचेगा तथा श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए विमान संख्या 2936 दिन के 11:40 पर अपनी वापसी उड़ान भरेगा।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, अब से कुछ देर बाद यानी 7:15 पर विविध भारती मुंबई से सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। ठीक उसी समय प्राइमरी चैनल पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम देश रागिनी।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का समय रहेगा 9 बजे। दिन के 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1337वीं कड़ी आप सुन पाएंगे।

आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 1:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसके अंतर्गत चर्चा का विषय रहेगा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस।

0: ये थे जन सूचनाएं। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति आज और कल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन करेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कल सचिवालय में 7वीं केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय तटीय सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। परिवहन विभाग ने राज्य परिवहन सेवा के बेड़े में 5 नई बसों को शामिल किया।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति आज और कल आपदा प्रबंधन निदेशालय के प्रशिक्षण सभागार में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन मास्टर ट्रेनर क्षमता निर्माण कार्यशाला सह मार्गदर्शन अभ्यास का आयोजन करने जा रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली के सहयोग से ये कार्यशाला भारत नॉर्वे समुद्री प्रदूषण पहल के तहत चरण दो के तहत आयोजित की जा रही है। पर्यावरण मंत्रालय के भागीदार संस्थान कचरा अलग करने, कचरे के परिमाणीकरण, सामग्री पुनर्चक्रण सुविधाओं, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, थोक कचरा उत्पादक अनुपालनों और द्वीप पारिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन पर संवादात्मक सत्र संचालित करेंगे। समिति ने संबंधित सरकारी विभागों और हितधारकों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कल सचिवालय में सातवीं केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय तटीय सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पुलिस महानिदेशक, आयुक्त सह सचिव गृह समिति के सदस्य, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस, भारतीय तटरक्षक बल, संयुक्त अभियान केंद्र, अंडमान निकोबार कमान, जिला प्रशासन तथा तटीय एवं समुद्री सुरक्षा से जुड़े अन्य हितधारक विभागों और एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समिति ने छठवीं बैठक के निर्णयों और सिफारिशों पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट की समीक्षा की। इसके साथ ही समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तटीय सुरक्षा, अंतर एजेंसी समन्वय, परिचालन तत्परता, बुनियादी ढांचे का विकास, निगरानी संचार प्रणाली और अन्य उपायों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने सभी हितधारक एजेंसियों के बीच निरंतर समन्वय पर बल दिया। सांसद श्री विष्णुपद रे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन सौंपते हुए ग्रेट निकोबार ढांचागत परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रभावित परिवारों के लिए उचित मुआवजा, समुचित पुनर्वास और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनसे तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। सांसद ने कहा कि ये परियोजना राष्ट्रीय रणनीति के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि द्वीप प्रशासन द्वारा तैयार किया गया मसौदा पैकेज प्रभावित परिवारों के लिए पर्याप्त नहीं है। अपने ज्ञापन में श्री राय ने गृह मंत्री से जल्द अपनी अध्यक्षता में एक बैठक बुलाने का अनुरोध किया है, जिसमें द्वीप प्रशासन, सांसद और प्रभावित परिवारों तथा उनके संघ के प्रतिनिधि शामिल हों। अंडमान निकोबार प्रशासन वाइपर और एंडरसन द्वीप के लिए एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजनाएं तैयार करने का कार्य नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट चेन्नई को सौंपा है। NCSCM ने द्वीप का प्रारूप, तटीय भूमि उपयोग मानचित्र तथा भू आकृति विज्ञान मानचित्र प्रस्तुत किए हैं और आम जनता एवं हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं। ये मानचित्र प्रशासन तथा पर्यावरण एवं वन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसकी सॉफ्ट कॉपी विभिन्न कार्यालयों में भी उपलब्ध कराई गई है। संबंधित हितधारक अपने विचार, टिप्पणियां, सुझाव तथा वर्तमान या प्रस्तावित परियोजनाओं का विवरण 30 दिनों के भीतर हेडो स्थित वन सदन के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है। राज्य परिवहन सेवा और DC SP कप अंतर ग्राम वॉलीबॉल चैंपियनशिप। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रतिघंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। द्वीप समूह में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का आधुनिकीकरण और विस्तार करने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत परिवहन विभाग ने कल राज्य परिवहन सेवा के बेड़े में 5 नई बसों को शामिल किया। इन बसों को मुख्य सचिव डॉ

चंद्रभूषण कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों को मध्य उत्तर अंडमान की विभिन्न राज्य परिवहन सेवा की इकाइयों में तैनात किया जाएगा। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने कल डीसी एसपी कप अंतर ग्राम वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। पुलिस विभाग और संबंधित विभागों के सहयोग से ये टूर्नामेंट वंडूर समुद्री तट पर आयोजित हुआ। उद्घाटन समारोह में दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, खिलाड़ियों, युवाओं और स्थानीय निवासियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि खेल अनुशासित और आत्मविश्वासी युवा नागरिकों के निर्माण में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने युवाओं को खेल गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। समारोह के दौरान तट सफाई अभियान का भी आयोजन किया गया। चैंपियनशिप की शुरुआत विम्बरलीगंज ग्राम पंचायत और वंडूर ग्राम पंचायत के बीच खेले गए रोमांचक उद्घाटन मैच के साथ हुई, जिसमें वंडूर ग्राम पंचायत ने जीत हासिल की। ये चैंपियनशिप दक्षिण अंडमान के विभिन्न स्थानों पर जारी रहेगी। मध्योत्तर अंडमान के डिगलीपुर थाना की ओर से सामुदायिक तैयारियों को मजबूत करने और स्वयं सेवकों की आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों के लिए 10 दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। हेड कांस्टेबल खोखन चंद्रदास 19 नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इस 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य आपदा प्रबंधन, बचाव कार्यों और अन्य सार्वजनिक सुरक्षा पहलों में प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए स्वयं सेवकों को आवश्यक जानकारी प्रदान करना है। मर्सेंटाइल मैरिन विभाग ने डीब्रेड की एनएसएस इकाई के सहयोग से एक पेड़ माँ के नाम के तहत वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। इस अभियान का उद्घाटन इंजीनियर एंड शिप सर्वेयर सह उप महानिदेशक तकनीकी गोपी कृष्ण सी ने किया। उन्होंने प्रतिभागियों को वृक्षारोपण अभियान के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देते हुए रोपे गए पौधों की देखरेख के लिए उनकी जियो टैगिंग के महत्व पर जोर दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने ग्लासगो में आयोजित महिला शॉट पुट F97 फाइनल में जीत हासिल करके देश के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। इस जीत के साथ ही पांचवें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। 9.81 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ शर्मिला ने पैरा एथलेटिक्स में भारत की पहली राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक विजेता बनकर इतिहास रच दिया। इसी स्पर्धा में शिल्पा के शायला को कांस्य पदक से नवाजा गया। वल्लूरी अजय बाबू ने पुरुषोत्तम के पुरुषों के भारोत्तोलन में 89 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। इससे पहले ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में 199 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति आज और कल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन करेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कल सचिवालय में 7वीं केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय तटीय सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। परिवहन विभाग ने राज्य परिवहन सेवा के बेड़े में 5 नई बसों को शामिल किया और दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन की ओर से DCSP कप अंतरग्राम वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 MHz पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए देश रागिनी।

देशरागनी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा गीत जो हमारे देश और हमारे आत्मसम्मान का प्रतीक है। ये गीत हमें याद दिलाता है कि हम चाहे जहाँ भी हो, हमारे दिल में भारत की मिट्टी की सुगंध हमेशा बनी रहती है।

दोस्तों, ये गाना हमारे वतन के प्रति गहरे प्यार और समर्पण की भावना बयां करता है। हर सुर में एक सपना है, हर शब्द में एक वादा है। यह हमें याद दिलाता है कि हम जहां भी हो, हमारे दिल में वतन का सम्मान हमेशा रहेगा।

0: उन्नति और प्यार का ये चमन हर भारतीय का सपना है। जब हम अपने वतन का नाम लेते हैं तो हमारे मन में गर्व का सागर बहता है।
1: श्याम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
2: क्या कहती हो शाबू की माँ?
1: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
2: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से।

0: आपका बच्चा 2 महीने से 5 साल तक की उम्र का है तो दस्त होने पर उसे ORS घोल के साथ सही मात्रा में जिंक की गोली जरूर दें 14 दिन तक। अधिक जानकारी के लिए आशा या आंगनबाड़ी बहन से संपर्क करें।
1: जिंक की गोली 14 दिन।
2: माइक्रोन्यूट्रिएंट इनिशिएटिव एवं भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 की श्रावण माह की 6वीं तिथि यानी 28 जुलाई 2026। तो आइए आपको सुनवाते हैं खेल जगत कार्यक्रम के तहत जॉगिंग कुछ सुझाव पर शिव जौर से जानकारी।

0: खेल जगत के आज के इस अंक में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। हम आज चर्चा करेंगे कि जॉगिंग सही तरीके से कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। हमारे साथ कार्यक्रम में हैं श्री एमपी शक्तिवेल, जो कि एक वेटरन स्पोर्ट्स पर्सन हैं। फिजिकल एजुकेशन में इनके पास मास्टर्स डिग्री है और मार्शल आर्ट्स के भी एक्सपर्ट हैं। शक्ति जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम।
1: धन्यवाद जी।
0: शक्ति जी, जैसा कि हम कह रहे थे कि आजकल बहुत सारे लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और लोगों को वॉकिंग करते हुए और जॉगिंग करते हुए हम देख सकते हैं।
1: हाँ जी, बिल्कुल।
0: लेकिन ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग सही तरीके से काम नहीं करते, जिससे कि जो फ़ायदा उन्हें होना चाहिए वो तो नहीं होता, उल्टे नुकसान हो जाता है। तो जहाँ तक जॉगिंग का सवाल है, तो शुरुआत में आप क्या बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी बातें हैं जो जॉगिंग करते हुए एक जॉगर को ध्यान में रखनी चाहिए?
1: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो है अर्ली मॉर्निंग जॉगिंग करें तो बेटर है, क्योंकि उस समय प्योर ऑक्सीजन होती है 80%। उसके बाद जो शाम के वक्त जो है ना दौड़ें, जो काफ़ी लोग कर रहे हैं, क्योंकि पोल्यूटेड है, तो आप जितने आप जॉगिंग करोगे उतना ऑक्सीजन लेवल जो है आप इनटेक करोगे अंदर, ज़्यादा ज़्यादा बढ़ेगा, तो उस मात्रा में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर जाएगा, जो आपको लंग्स को इफेक्ट कर सकती है। इसलिए बेटर होगा अर्ली मॉर्निंग या फिर सनसेट होने के बाद ऐसी जगह दौड़िएगा, जॉगिंग करिएगा जहाँ पर जो है पोल्यूशन ना हो, वो बेटर होगा।
0: और इसके बाद कुछ टेरेन वगैरह पर भी ध्यान देना चाहिए कि कैसी जगह होनी चाहिए, ऊंची नीची या समतल या?
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। टेरेन का तो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए टेरेन के ऊपर, क्योंकि जो है आप अनइवन सरफेस पे आप दौड़ोगे तो आपको जो है जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स होगा, प्रेशर पड़ेगी आपको, या एंकल ट्विस्ट होगा, या नी में प्रॉब्लम्स आएंगे, हिप में प्रॉब्लम आएगा। बेटर है कि समतल जगह पर जॉगिंग करें।
0: और कुछ लोग सड़कों पर भी दौड़ते हैं?
1: सड़कों पे देखिए दौड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है प्रॉपर शूज़ होना चाहिए। कल रनिंग के लिए शूज़ आती हैं, जॉगिंग के लिए शूज़ आती हैं कुशन वाली, तो वैसे शू का जो है इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा,
0: ताकि जो हार्ड सरफेस से जो इफेक्ट होता है उसको
1: जो इम्पैक्ट
0: मिनिमाइज किया
1: होता है। हाँ
0: जा
1: जी,
0: सके।
1: बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हैं उसको।
0: और अटायर कैसा होना चाहिए, पहनावा कैसा होना चाहिए?
1: पहनावा देखिएगा कि जो है अगर सर्द हो तो जो है आप जो है फुल ट्रैक पैंट पहन के दौड़िएगा, फुल वार्म होने के बाद जो है उसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हो या फिर जॉगिंग लगातार कर सकते हो आप। अगर गर्मी हो तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो है शॉर्ट्स पहने, ताकि जो है फुल बॉडी में जो है, और जितने हो सके हल्के कपड़े पहने,
0: अच्छा,
1: तो ताकि जो है कंप्लीट बॉडी जो है ब्रीथ करें, ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ आवर बॉडी।
0: बिल्कुल। अब देखिए, आपने कहा कि जूते इसके लिए स्पेशलाइज्ड अगर हो तो अच्छा है।
1: हाँ जी,
0: क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने इवन चप्पल पहन के भी हल्के फुल्के दौड़ते हुए देखा है,
1: बिल्कुल मैंने भी देखा है,
0: जो कि गलत है।
1: ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा।
0: हाँ,
1: ये गलत है, ये एब्सोल्युटली गलत है, क्योंकि जो है उस पर जो है आपका एक तो जो है हील पे प्रेशर पड़ेगी एंड शिन पे पड़ेगा, जो आपको जो है फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स होगी, नी है कन्फर्म है ये, और हिप में भी। तो बेटर है कि जो है प्रॉपर रनिंग शू के साथ ही दौड़े आप।
0: अच्छा, और हमारे इन दिनों में देखिए बहुत सारी जो जगह है वो अंडुलेटिंग तो है ही है, मतलब चढ़ाई और वो जो उतार है, हिल एंड स्लोप बहुत सारी जगहों पर है और लोग हिल पे भी दौड़ते हैं।
1: प्लेन टेरेन हो तो उस पर आप दौड़े वो बेटर होगा। जब स्टीप वगैरह, जब स्लोप है या हिल है, तो हिल एरिया में दौड़ेंगे तो क्या है कि वो जो है आप तो एक जॉगर जो है एक स्मॉल स्टेप, धीरे धीरे धीमी गति से दौड़ने को जो है जॉगिंग कहते हैं। तो आप इसमें जो है आप जैसे जैसे आप हिल पे दौड़ोगे तो आपका जो है ऑक्सीजन इंटेक जो है ज़्यादा होगा, ब्लड लेवल्स भी बढ़ेंगे आपको, और काफ मसल्स और आर्म स्ट्रिंग पे प्रेशर पड़ेगा, तो इलाइट एथलीट्स के लिए ये ठीक होगा।
0: अच्छा,
1: और जॉगर्स के लिए, क्योंकि जॉगर्स में जो है सारे उम्र वाले व्यक्ति आते हैं, उसमें महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, तो आप उसमें जो है

0: एल्डर एज वाले भी रहते हैं, उम्र वाले भी, जैसे 40 के भी होते हैं, 50 के भी होते हैं, 60 के भी होते हैं, बेटर होगा कि छोटे छोटे कदम से दौड़े, और बेटर होगा समतल पे दौड़े, वो अच्छा होगा।
1: और जो मतलब जैसे आपने कहा कि लाइट एथलीट है या किसी मैराथन वगैरह के लिए
0: हाँ
1: प्रिपेयर
0: जी
1: कर रहे हैं,
0: हाँ
1: जो
0: जी
1: अल्ट्रा फिट हैं,
0: हाँ जी हाँ
1: वो
0: जी
1: तो स्टीप में भी दौड़
0: हाँ,
1: सकते हैं।
0: उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका जो है ऑक्सीजन इंटेक जो है बहुत अच्छा होता है, वो फुल बॉडी प्रिपेयर रहता है उसके लिए।
1: और जहाँ तक पोस्चर का सवाल है,
0: हाँ
1: हमने
0: जी
1: बहुत तरह से लोगों को दौड़ते हुए देखा है, तो
0: बिल्कुल
1: इसका सही पोस्चर क्या होना चाहिए?
0: सर, देखिए पोस्चर जो है आपका बॉडी स्ट्रेट होना है, और आपका चिन जो है डाउन नहीं होना है, अप होना है, और सामने की ओर देखते हुए दौड़ना है, और आपका शोल्डर जो फ्री होना है, टाइटन नहीं रखना है आपको, फ्री होना है, और नेचुरल मूवमेंट होना है हाथों का, और जो ब्रीथ जो है, सांसें जो है धीमी गति से और गहरी सांस लें बीच बीच में, वो अच्छा होगा।
1: अच्छी बात है, मतलब झुक के
0: ना
1: दौड़ना
0: ना वो
1: ठीक
0: अच्छा
1: नहीं
0: नहीं
1: है,
0: है,
1: ठीक नहीं
0: वो
1: है।
0: अच्छा
1: और
0: नहीं।
1: जो बिगनर्स, जैसे आपने बिगनर्स की
0: हाँ
1: बात
0: जी
1: कही, और बहुत सारे जो सीनियर हैं, थोड़े जो सीनियर
0: बिल्कुल
1: सिटीजन्स भी
0: बिल्कुल
1: आजकल दौड़ते
0: बिल्कुल
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: तो उनको आप क्या सलाह देंगे, किस तरह से जॉगिंग की ओर अगर कोई आना चाहे तो आए, कि एक संग दौड़ें या फिर धीरे धीरे कैसे करें?
0: देखिए, आप अगर रनिंग और जॉगिंग में फ़र्क है, जो धीमी गति से दौड़ना उसको कहते हैं जॉगिंग, और रनिंग में जो है गति तेज़ होती है, तो जॉगिंग जो है जितना हो सके ग्राउंड में दौड़ रहे हैं या फिर हार्ड रोड में दौड़ रहे हैं, उसको किक ना करें, टैप करें, जिससे जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर साथ में ग्रुप के साथ दौड़ रहे हैं तो आप बातचीत करते करते दौड़ रहे हैं, इसके मतलब क्या है कि आपको थकान महसूस नहीं हो रही, आपका बॉडी भी वर्कआउट हो रहा है।
1: अच्छा।
0: अगर आप थोड़ा सा रनिंग स्पीड करेंगे, देखिए आप बात कर नहीं पाएंगे, आप सांसें फूलने लगेंगे, आपको बातें जो है क्लियर हो नहीं पाएंगे, तो बेटर ये होगा कि जो है स्लो स्लो दौड़ें, जैसा बिगनर्स के लिए 1 मिनट दौड़ें धीरे धीरे, जॉगिंग करें, उसके बाद जो है फिर स्टॉप करें, वॉक करें 30 सेकेंड्स या 1 मिनट के लिए, उसके बाद उसी को रिपीट करें, तो एक बार जो है आप उसमें ठीक हो जाएंगे, लय मिल जाएगी आपको, फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर आप कई दूर तक तो दौड़ सकते हैं आप।
1: बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि पहले थोड़ा सा दौड़ें, फिर चलें, फिर
0: हाँ जी
1: दौड़ें,
0: हाँ
1: एक
0: जी
1: लय में आ
0: हाँ
1: जाएं।
0: जी
1: इवन जो प्रॉपर जॉगर्स हैं,
0: हाँ
1: जो कि
0: जी
1: मतलब अच्छी तरह से जॉगिंग करते हैं,
0: हाँ जी
1: क्या उनको भी पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेना चाहिए जॉगिंग से पहले?
0: बिल्कुल सर, वार्म अप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वाइटल रोल अदा करता है इसमें। पहले वॉक करिएगा, वॉक करने के बाद बॉडी को थोड़ा तो वार्म हो जाएगी, उसके बाद जो है थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ा सा कर लीजिएगा, बेटर होगा, उसके बाद जो है आपको इजी पड़ेगा, वरना क्या है कि आपको मसल्स पुल होने का चांस रहता है।
1: अच्छा, मतलब बॉडी थोड़ा सा प्रिपेयर हो
0: हाँ
1: जाएगा,
0: जी
1: थोड़ा सा
0: बिल्कुल
1: हल्का सा हीट में आ जाए,
0: बिल्कुल
1: फिर आप दौड़
0: बिल्कुल
1: सकते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: उससे
1: चलिए
0: पहले जो आप वॉक कर लें उसके बाद जॉग करें,
1: जी,
0: डायरेक्टली जो है आप जॉग ना करें, वॉक उसके बाद जॉग।
1: चलिए। जैसे कि एक्सरसाइज जब करते हैं तो कहते हैं कि शुरू में मतलब पेट भरा नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए, तो
0: बिल्कुल
1: जॉगिंग में भी ये बात लागू होती है?
0: अब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप जॉग कर रहे हो तो जो है खाली पेट होनी चाहिए, पेट पे कुछ नहीं होना चाहिए, बस अर्ली मॉर्निंग अगर दौड़ रहे हैं तो बस लुकवार्म वाटर पी के उसके बाद आप दौड़ने स्टार्ट करें, आप बेटर होगा, क्योंकि जिम की बात अलग है, जो वेट लिफ्टर करते हैं वो अलग बात है, उनको जो है कुछ खा के ही करना है,
1: करना है।
0: तो क्योंकि मसल बिल्ड करना है उनको,
1: जी
0: जॉगिंग में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप दौड़ रहे हो, आप धीमी गति से दौड़ रहे हो, पेट पे अगर आपका समझ लीजिए कुछ खाए हैं तो जो है आपको पेट दर्द देना शुरू हो जाएगा,
1: तो खाली पेट रहे तो बेहतर
0: बिल्कुल
1: है।
0: बेहतर है।
1: और जॉगिंग के तुरंत बाद, जैसे होता है ना, जब लोग हाँफते हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है,
0: हाँ जी
1: तो उस समय कुछ ज़्यादा लिक्विड इंटेक करें या कुछ खाएं, वो ठीक रहता है?
0: देखिए, लिक्विड की मात्रा जो है कम लेना चाहिए, लेकिन तुरंत ना लें, मिनिमम जो है कोशिश करें कि आधे घंटे तक का, मैक्सिमम 45 मिनट का, या आपको उतना ही जो है ज़्यादा आपको प्यास लगी है पीना ही है तो एक सिप पी लिया करें, बेटर होगा कि जो फुल कम्प्लीटली कूल डाउन या लिम्बरिंग डाउन या वार्म डाउन एक्सरसाइज के बाद ही जो है आप लिक्विड इनटेक करें।
1: अच्छा, मतलब बॉडी जब थोड़ा सा नॉर्मल हो
0: हाँ
1: जाए
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मल स्टेटस पे आ जाए
1: तो
0: उसके
1: उसके
0: बाद
1: बाद,
0: ही। हाँ जी
1: कुछ अगर भूख है तो कुछ खाया भी जा
0: बिल्कुल
1: सकता
0: बिल्कुल,
1: है।
0: पहले पहले लिक्विड आइटम, उसके बाद ही जो है हार्ड आइटम।
1: शक्ति जी, आपने जॉगिंग कैसे करें, क्या क्या बातें ध्यान में रखें, बहुत सारे छोटे छोटे हिंट्स जो है आपने दिए हैं,
0: हाँ जी
1: तो आप जो जनरल देखते हैं हमारे इन द्वीपों में, जैसे बहुत सारे लोग आजकल जॉगिंग करते
0: हाँ जी
1: हैं, तो इसको और एनकरेज करने के लिए आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? इट्स अ गुड एक्सरसाइज।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ गुड एक्सरसाइज, एवरी एक्सरसाइज गुड फॉर हेल्थ, सारे जो एक्सरसाइज व्यायाम है शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन जितने भी एक्सपर्ट से अगर आप पूछिएगा वो रेकमेंड करेंगे दौड़ने, यानी धीरे दौड़ना या दौड़ना, इसी को रेकमेंड करेंगे, क्योंकि उसमें जो कंप्लीट बॉडी वर्कआउट हो जाती है, उसके बाद तो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज तो करोगे ही आप, तो कंप्लीट बॉडी फिट हो जाती है, उसका बेनिफिट तो काफ़ी है, हार्ट का है, लंग्स का है, कहते हैं ना रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छी हो जाएगी और सर्कुलेटरी सिस्टम भी अच्छी हो जाएगी, ये दोनों सिस्टम अच्छा है तो आदमी बीमार नहीं पड़ेगा।
1: बिल्कुल, तो शक्ति जी, आज आप कार्यक्रम में आए और आपसे इतनी बातें हुई, छोटी छोटी बातें आपने बताई, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बातें थी। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं, जो जॉगिंग

0: अभी आप खेल जगत के तहत एमपी शक्ति वेल से ली गई पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंट करता थे शिबू जॉर्ज। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के तहत आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत। पहला गीत सुनिए रिफ्यूजी फिल्म का, ये गीत जिसे गाया है सोनू निगम और अलका याग्निक, बोल जावेद अख्तर के हैं तथा संगीत दिया है अनु मलिक ने।
1: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
2: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होठों को छू लिया।

0: लता मंगेशकर, SP बाला सुब्रमण्यम और सातु क्यों आवाज़ में आइए सुनते हैं हम आपके है कौन। इस फिल्म का ये गीत बोल रविंदर रावल के हैं तथा संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

0: कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा, बस एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: क्योंकि इस फिल्म का गीत आइए आपको सुनवाते हैं, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

0: श्रोताओं, गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी गीत।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।
0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़ दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम 1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम 1 की सफलता की सराहना की थी।
1: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
0: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
2: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन मामलों में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान, सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्ले बुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। ये चुनाव जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे, अब आज से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत

0: वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टेहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मॉनसून सक्रिय। आकाशवाणी समाचार देहरादून।
0: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F50 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है।
1: के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार देहरादून।
0: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
2: हम बहुत खुश है, हमारे देश के लिए मेडल लाके हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाएंगे।
0: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने न पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है, देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है, आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, 100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी। सरकार ने कहा, समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं। सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बकमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद। हिंदुस्तान ने बताया है, दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्र बकमून की शक्ल में नजर आएगा, प्रत्यक्षित चंद्र घटनाओं में से एक नग्न आंखों से भी देख सकेंगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सलमा आगा और जगजीत सिंह को सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 9 बजे हैं। श्रोताओं, आइए आनंद लेते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म मधुमति से, जिसे गाया है मुकेश ने, बोल शैलेंद्र की है तथा संगीत दिया है साहिल चौधरी ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म हाथ की सफाई से। गायक कलाकार है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी। बोल गुलशन बावरा के हैं तथा संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
3: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
4: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: क्या आप जानते हैं कि HIV पॉजिटिव लोगों के मानवाधिकारों और वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अब देश में एक नया कानून है, HIV एंड AIDS प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017। 10 सितंबर 2018 को लागू किए गए इस एक्ट में HIV पॉजिटिव लोगों को उनका हक दिलाने और उनकी गरिमा व आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं। इस एक्ट के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि HIV पॉजिटिव लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न किया जाए, किसी भी इंसान को उसका HIV स्टेटस बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। इस एक्ट की वजह से अब किसी को भी नौकरी पर रखने से पहले उसका HIV टेस्ट कराना या HIV स्टेटस पूछना और बताने के लिए दबाव बनाना दोनों कानूनन अपराध है। किसी भी इंसान की HIV टेस्ट के समय प्री और पोस्ट HIV काउंसलिंग करना जरूरी है और साथ ही उसकी सूचित सम्मति लेना भी जरूरी है।
6: बच्चों, जवाब सही से लिखना और हाँ, 10 नंबर सफाई के होंगे।
7: अच्छी तरह सफाई करने के लिए उतने ही नंबर।
8: जी हाँ, घर में और आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले इत्यादि को हर सप्ताह अच्छी तरह साफ करें। प्लास्टिक के कप, ग्लास और नारियल के खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें ताकि उसमें पानी जमा न हो। याद रखें, डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर साफ पानी में ही पनपता है।
9: मच्छरों के काटने से बचें, इसके लिए पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। बुखार की स्थिति में पैरासिटामोल लें, एस्प्रिन हरगिज न लें।
10: वाह भाई, बच्चों ने तो हमें भी पास कर दिया।
6: हर सफाई के नंबर 100 में से 100।
0: जवानी दीवानी।

फिल्म का गीत आइए आपको सुनवाते हैं, जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने, बोल आनंद बख्शी के हैं तथा संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में आइए सुनते हैं हम किसी से कम नहीं इस फिल्म का ये गीत। बोल मजरू के हैं तथा संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उषा विजय कुमार का कर्नाटक शैली में गोटू वाद्यम। इनके साथ वायलिन पर के विश्वनाथन तथा मृदंगम पर एन हरि ने संगति की है। तो पहले लीजिए सुनिए उषा विजय कुमार का गोटू वाद्यम पर प्रस्तुत राग श्रीरंजनी, जो आदि ताल में निबद्ध है।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हे भाई, अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया है?
6: डेंगू और चिकुनगुनिया।
5: भाई तो दोनों का गेम कर डाले क्या?
6: अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का, टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा ना होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे, बुखार हो तो पैरासिटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं।
5: पर भाई, ये बीमारी का पता कैसे चलेगा?
6: सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा?
5: वाह भाई, आप तो असल में MBBS हो।
7: श्रोताओं, राग श्री रंजनी सुनने के बाद अब लीजिए सुनिए राग कल्याणी, जो मिश्र चापुताल में निबद्ध है, कृति मुत्तुस्वामी की है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप उषा विजय कुमार का कर्नाटक शैली में गोटू वाद्यम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 10 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म उड़ता पंजाब से। गायक हैं शाहिद माल्या। शिव कुमार के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया अमित त्रिवेदी ने।

बताऊं आप लीजिए, सुनिए शिवम के संगीत निर्देशन में तैयार संदीप का लिखा गीत। फिल्म है मैरी कॉम और आवाज अरिजीत सिंह की।

और अब प्रस्तुत है रश्मि सिंह की लिखी एक गीत रचना, जिसे संगीत से सजाया जीत गांगुली ने। फिल्म है सिटी लाइट्स और आवाज नीति मोहन की है।

और अब लीजिए सुनिए बॉम्बे वेलवेट फिल्म का गीत, नीति मोहन की आवाज़ में, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के हैं व धुन तैयार की अमित त्रिवेदी ने।

श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं जावेद बशीर की आवाज में भाग मिल्का भाग फिल्म का गीत। शब्दकार प्रसून जोशी व संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

0: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronks. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronks owners, starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
1: श्रोताओं आप लीजिए सुनिए शशा और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में तुम्हारी सुलू फिल्म का एक गीत। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सुकृति कक्कर, मन्नत नूर, रोचक कोहली और अनीता भट्ट की आवाज़ों में सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म का एक गीत बोल कुमार के थे व धुन तैयार की थी रोचक कोहली ने। और कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म हेट स्टोरी 4 से, आवाज़ है जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की। मनोज मुंतशिर का लिखा गीत है ये, धुन तैयार की आरको ने।

श्रोताओं अब लीजिए सुनिए वीरे की वेडिंग फिल्म का एक गीत। गीतकार दीपक नूर, संगीतकार हैं फरजान फैज और गाने वाले कलाकार हैं मीका सिंह।

श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए मीका सिंह और ध्वनि भानुशाली की आवाजों में फिल्म दे दे प्यार दे का एक गीत। गीतकार कुमार तथा संगीतकार हैं अतुल शर्मा।

और अब लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाजों में फिल्म रईस का एक गीत। अमिताभ भट्टाचार्य के संगीत निर्देशन में तैयार इस गीत को लिखा हर्षदीप कौर ने।

मोहित चौहान, एआर रहमान और साथियों के गाए फिल्म रॉक स्टार के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल अब यहीं समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 11 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1337वीं कड़ी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं,
2: ऊंची उड़ान भरने के लिए हिम्मत के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास का होना जरूरी है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार को भेजने के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू।
3: और राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद ने लिखा है, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार। गुजरे सप्ताह हमने चींटियों पर गीत सुना, बहुत पसंद आया गीत। गांव की धरती में आपने प्रकृति, पर्यावरण, खेत खलिहानों, फसलों और गाय भैंस के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। आपने आगे लिखा है,
2: सुंदर प्यारा गीत टिम टिम तारा जादुई पिटारा हमारे यहाँ बच्चों को बहुत पसंद आता है। हमारा विनम्र निवेदन है कि इस गीत को बार बार बजाया करें।
3: इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ लघु कथाएं, जिनसे निश्चित रूप से हमें प्रेरणा मिलेगी
2: जी।
3: इस क्रम में श्रोताओं, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं महात्मा गांधी के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग, जो उनकी मित व्ययिता और संसाधनों के सदुपयोग और अपव्यय न करने के स्वभाव को दर्शाता है।
2: ये उन दिनों की बात है जब गांधी जी के नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था। गांधी जी के बहुत सारे प्रशंसक थे तो आलोचक भी बहुत थे
3: जी। उन्हें पसंद करने वाले थे तो नापसंद करने वाले भी थे।
2: बिल्कुल।
3: एक बार की बात है, किसी ने उन्हें कई पन्नों का एक लंबा पत्र लिखा जिसमें उनकी जमकर निंदा की गई।
2: गांधी जी ने उसे पढ़ने के बाद कागज में लगी धातु की पिन सावधानी से निकालकर अलग रख ली ताकि उसे दोबारा उपयोग किया जा सके और पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया।
3: जब उनके निजी सचिव महादेव देसाई जी ने पूछा कि

0: इतनी छोटी सी पिन को संभाल कर रखने की क्या आवश्यकता है? तो गांधी जी ने समझाया कि देश के संसाधन अमूल्य हैं।
1: जी,
0: यदि हर व्यक्ति छोटी छोटी वस्तुओं का भी सोच समझकर उपयोग करे और उन्हें व्यर्थ न गवाए तो बहुत बड़ी बचत हो सकती है।
1: श्रोताओं, इस प्रसंग से यही प्रेरणा मिलती है कि छोटी छोटी चीजों का भी हमें सम्मान करना चाहिए और अपव्यय या फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए।
0: एक और बात समझ में आती है श्रोताओं, कि संसाधनों का पुनः उपयोग या रीयूज करना चाहिए। सादगी और मितव्ययिता जीवन का महत्वपूर्ण गुण है।
1: जी श्रोताओं, एक और बात, गांधी जी दिखावे और भोजन की बर्बादी के भी सख्त खिलाफ थे। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि भोजन भी उतना ही लें जितना खाया जा सके।
0: आज के युग में श्रोताओं, सभी साधनों और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है।
1: जी,
0: गांधी जी का ये प्रेरक प्रसंग सचमुच एक उत्तम उदाहरण है।
1: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था मितव्ययिता। अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
0: जी श्रोताओं, मितव्ययिता इस शब्द का अर्थ है जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च करना, और अनावश्यक खर्च से बचना ही मितव्ययिता कहलाती है।
1: जैसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे बिजली और पानी का अनावश्यक उपयोग न करना, केवल जरूरत की वस्तुएं ही खरीदना, भोजन की बर्बादी न करना और समय का सदुपयोग करना।
0: जी तो श्रोताओं, अभी आपने सुना गांधी जी के जीवन का ये प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गांधी जी के निजी सचिव का क्या नाम था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: और आपको बता दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं, वहां हमारी पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण आप सुन सकते हैं।
0: और यदि NCERT की पाठ्य पुस्तकों का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT Books PDF। निर्देशों का पालन करें और पुस्तक को डाउनलोड करें।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
0: और अब बारी है श्रोताओं हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलाते चलो।
1: NCERT की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक से उद्धृत इस कार्यक्रम को गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों को प्रेरित करती है कि वे प्रेम और स्नेह का दीप जलाते रहें और निराशा के अंधकार में आशा की ज्योति जलाते हुए समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते रहें।

इस कार्यक्रम में बच्चों के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि वे संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं जिनके कारण बच्चों की सीखने की प्रक्रिया बाधित

0: हाँ तो बच्चों बताओ, सूर्य किस दिशा से उगता है?
1: पूरब से।
0: शाबाश। और किस दिशा में डूबता है?
1: पश्चिम में।
0: अरे लता, तुम क्यों नहीं बोल रही?
2: दीदी दीदी, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है।
0: क्यों लता, तुम्हारी क्या समझ में नहीं आ रहा मैं जो पढ़ा रही हूँ?
3: दीदी, इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता।
4: दीदी, ये तो एकदम बुद्धू है।
2: दीदी दीदी, ये तो हमेशा चुप बैठी रहती है।
0: चुप चुप हो जाओ तुम सब, मैं लता से पूछ रही हूँ, लता ही जवाब देगी। हाँ लता, बताओ बेटा, तुम्हें जो मैं पढ़ाती हूँ समझ में नहीं आता क्या?
3: दीदी वो।
0: हाँ बोलो।
3: दीदी।
0: बोलो लता, क्या बात है?
5: नई नई आई अध्यापिका उमा देवी को समझ में नहीं आ पा रहा था कि लता क्यों साधारण से साधारण सवाल का जवाब नहीं देती। कक्षा के बच्चे कहते थे कि लता बुद्धू है, पर अगर वो इतनी बुद्धू होती तो तीसरी कक्षा में कैसे आ पाती? उन्होंने लता के व्यवहार की पहेली हल करने के लिए कमर कस ही ली। उन्होंने गौर किया कि लता आधी छुट्टी में भी अकेली ही रहती है, बाकी बच्चों से घुलती मिलती नहीं है, बच्चे भी उसे अपने साथ खिलाते नहीं हैं, बल्कि कई चंचल बच्चे उसे काफी तंग भी करते हैं। दो ही हफ्तों में उमा देवी की समझ में अच्छी तरह आ गया कि लता कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा है। वो बोलती भले ही ना हो, पर लिखित परीक्षाओं में उसके अंक बाकी छात्रों से काफी अच्छे होते हैं। तो क्या ये प्रतिभाशालिनी छात्रा सिर्फ बहुत कम बोलने के कारण हमेशा के लिए सबकी उपेक्षा का शिकार बन जाएगी? उमा जी के गले से ये बात उतर नहीं पा रही थी। उन्होंने लता के माता पिता से मिलने का निश्चय किया।
6: नमस्ते बहन जी।
1: नमस्ते।
6: नमस्ते बहन जी।
7: नमस्ते शिखा।
8: अरे दीदी जी, आप
7: आइए आइए।
8: नमस्ते बहन जी।
7: नमस्ते, यहाँ बैठिए
8: जी,
7: यहाँ। आज कैसे गरीबों के घर आपने।
8: अरे बहन जी, कैसी बात कहती हैं आप, मैं तो कई दिन से सोच रही थी, आज निकाल पाई समय।
7: ठीक कहती हैं आप, काम में से समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आपको तो पढ़ाना भी होता है, दोहरी जिम्मेदारी।
8: हाँ ये तो है।
7: अरे लो, लता के बापू भी आ गए।
8: राम राम दादा।
9: हाँ,
8: कैसे हैं आप?
9: राम राम। अरे आप यहाँ? लता, ओ लता, बहन जी के लिए शरबत तो ला। इतनी बड़ी ढींगड़ी हो गई पर अकल रहती भर नहीं। और तुम लता की माँ, तुम्हें भी बातें बनाने से फुर्सत नहीं मिलती।
8: नहीं नहीं दादा, अभी तो आकर बैठी हूँ मैं।
9: अरे बहन जी, ये माँ बेटी है ही ऐसी, कतई पागल।
8: ऐसा मत कहिए दादा।

0: लता तो बहुत अच्छी बच्ची है।
1: अच्छी, और ये छोरी मुंह से तो बोल नहीं फूटता इसके।
0: अरे लता आओ बेटा, आओ आओ बैठो, यहाँ बैठो मेरे पास।
2: जी दीदी।
1: लता जाओ यहाँ से, बड़े लोगों में बैठने का तेरा कोई काम नहीं। बहन जी आप इसकी माँ से बतियाओ, मैं जरा बाहर का काम देखूं। हा?
0: जी।
3: लता के घर जाकर उमा देवी की समझ में आया कि लता इतनी चुप चुप क्यों रहती है। उसके पिता का अपमानजनक व्यवहार किसी को भी गुमसुम बनाने के लिए काफी है। लता की दबी सहमी मां भी उसे किसी किस्म का आत्मविश्वास नहीं दे पा रही। फिर भी लता को रहना तो इन्हीं माता पिता के साथ है। उमा जी ने तय किया कि इन्हीं माता पिता की मदद से वो लता की समस्या सुलझाएंगी। शुरुआत उन्होंने खुद की।
0: अच्छा बच्चों ये बताओ कि पूरी कक्षा में सबसे ज्यादा तेज और दूर तक कौन दौड़ता है?
4: दीदी लता, दीदी लता।
0: लता?
5: जी दीदी।
0: क्या ये लता?
5: जी दीदी।
0: अरे नहीं।
5: हाँ दीदी, लता को कोई नहीं पकड़ पाता।
0: अच्छा,
5: एक बार इसका बछड़ा खेतों में भाग गया था। हम सब उसे पकड़ने दौड़े पर बछड़ा दौड़ता गया, सारे थक गए पर लता बछड़े को पकड़ कर ही लाई।
0: अच्छा
5: जी दीदी।
0: लता ये सच है क्या? अरे वाह लता, तुम तो बड़ी होशियार हो।

0: महीने भर बाद स्कूल की खेल प्रतियोगिताओं में दौड़ के 4 इनाम लता को मिले। उमा जी ने स्कूल के सभी बच्चों के माता-पिता को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रित किया था। भारी सभा में अपनी बेटी को 4-4 इनाम मिलने पर लता के पिता ने अपने को गौरवशाली महसूस किया।
1: अरे वारी पगली छोरी, दौड़ में तो खूब नंबर मारा तूने। हाँ
2: बापू, मुझे पगली छोरी क्यों कहते हो? मैं पगली नहीं हूँ।
1: देखा, इनाम पाकर कैसी जबान लड़ा रही है। अच्छा चल, तू पगली छोरी नहीं है, ठीक?
3: हाँ। नमस्ते दादा।
1: नमस्ते नमस्ते।
3: क्या बातें हो रही हैं बेटी से?
1: अरे आपने तो बहन जी कमाल कर दिया। मैंने तो कभी देखा ही नहीं था कि जरा जरा से बच्चे ऐसे बढ़िया खेल कूद दिखाए।
3: हाँ दादा, और खास कर लता।
1: लता ने तो बहन जी बहुत ही कमाल किया।
3: और दादा, आप इसकी तरफ जरा सा ध्यान देना तो ये और भी कमाल कर सकती है।
1: वाह बहन जी, आप ही क्या कहती हैं, इस पे हमने क्या ध्यान देना है? आपने ध्यान देना है वो आप दे ही रही हैं।
3: देखिए दादा, मेरे पास लड़की रहती है करीब 4 घंटे और आपके पास रहती है 20 घंटे, है कि नहीं?
1: हाँ बिल्कुल।
3: और फिर आप उसे जितना प्यार करते हैं उतना कोई और, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, कर सकता है भला?
1: नहीं जी नहीं।
3: तो दादा, अगर मेरी जरा सी मेहनत से लड़की इतना अच्छा नतीजा दिखा सकती है तो आपके सहारा देने से कितना कमाल हो जाएगा, सोचिए जरा।
1: पर बहन जी मैं क्या करूं? देखो इसकी किताबें वर्दी।
3: वो सब तो ठीक है दादा, उसमें आप कोई कमी नहीं करते, पर आप इसे हर वक्त डांटना बंद कर दें।
1: वो तो बहन जी।
3: देखिए दादा, आप हैं एक माली के समान और ये है एक फूल के समान। आप ही उसे कोंचते रहेंगे तो क्या नतीजा होगा?
1: वो
3: अब देखिए ना, इतनी होशियार लड़की और मामूली बात करने में भी कितना घबराती है।
1: पर उसका इसकी पढ़ाई से क्या लेना देना है?
3: दादा, कम बोलने की वजह से काफी लोग इसे बुद्धू समझते हैं।
1: है?
3: लता रहती भी काफी सहमी सी है, बच्चों के साथ घुलमिल भी नहीं पाती।
1: हो।
3: धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से भी उचटने लगेगा और हो सकता है कल को घर गृहस्थी में भी।
1: बहन जी मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था।
3: पर अब तो आपको मालूम हो गया ना दादा।
1: जी
3: बस आप इसे बात बात पर डांटना बंद कर दें।
1: हाँ हाँ बहन जी, मैं कोई इसका दुश्मन थोड़े ही हूँ, बाप हूँ बाप।
3: वाह दादा, लाख टके की बात कही आपने।

उमा देवी ने लता के आत्मविश्वास को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू तो खुद ही की, पर उसे बनाए रखने के लिए उन्होंने लता के पिता का सक्रिय सहयोग मांगा। उमा जी की लगन भरी पहल ने ही लता के पिता को प्रेरित किया। आप भी माता पिता का सक्रिय सहयोग मांगिए। माता पिताओं से मिलने के बहुत से अवसर आपको मिलते हैं, स्कूल के उत्सव, सामाजिक कार्यक्रम या फिर घर पर मुलाकात। माता पिता का पूरा और सक्रिय सहयोग आपका और आपके विद्यार्थी का अधिकार है। इसे पाने के लिए कोई प्रयास बाकी न रखें।

सहयोग मांगा। उमा जी की लगन भरी पहल ने ही लता के पिता को प्रेरित किया। आप भी माता पिता का सक्रिय सहयोग मांगिए। माता पिताओं से मिलने के बहुत से अवसर आपको मिलते हैं, स्कूल के उत्सव, सामाजिक कार्यक्रम या फिर घर पर मुलाकात। माता पिता का पूरा और सक्रिय सहयोग आपका और आपके विद्यार्थी का अधिकार है। इसे पाने के लिए कोई प्रयास बाकी न रखें।

0: ये क्या मतलब है लता, तुम तो हर बार मुझे ही सबसे पहले चोर बना देती हो।
1: मैं क्या करूं, तू डरते इतना धीरे है।
0: भाई
2: अच्छा सुन लता, शाम को मेरे घर आएगी?
1: हाँ हाँ,
2: पता है मेरे मामा ने मेरे लिए छोटी सी गुड़िया भेजी है।
1: अच्छा,
2: उसके सचमुच के बाल है।
1: ओहो,
2: और एक कंघी भी है।
1: अरे सच, फिर तो मैं स्कूल का काम खत्म करके आऊंगी।
2: ठीक है।
0: अच्छा लता, वो मैं भी आ जाऊंगा स्कूल का काम लेकर तेरे घर। वो मुझसे ना भाई गणित के सवाल ही नहीं होते, मैं क्या करूँ।
1: ठीक है आ जाना।
0: अच्छा
2: मैं भी आ जाऊँ लता।
1: हाँ हाँ,
0: मैं भी आ जाऊँ लता।
1: हाँ हाँ, तुम भी आ जाना।
3: आखिर उमा जी की मेहनत और लता के माता पिता का सहयोग रंग लाया। लता अब बदल चुकी है, आत्मविश्वास से भरपूर, सहज, साथियों की संगत और अपने बचपन का आनंद लेती है। ये चमत्कार आपके यहां भी संभव है।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
2: जगबंधु,
1: कुसुमलता
2: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार। उमंग।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन की 11:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रगीत।
1: आपका जूता देखा।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म कयामत से। आवाजें हैं अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया नदीम श्रवण ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: स्टिल स्टक ऑन ओल्ड कार? स्विच टू स्मार्टर फ्यूल विद मोर सेविंग्स विद विक्टोरियस SCNG. इट्स स्मार्टर बिकॉज इट गिव्स एन इंप्रेसिव 27.02 किलोमीटर पर केजी माइलेज एंड हैज अंडरबॉडी CNG टैंक, सो यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन बूट स्पेस। मोर सेविंग्स बिकॉज यू गेट ऑफर्स अप टू 50,000 ऑन एक्सचेंज ऑफ योर ओल्ड कार। सो हरी एंड बुक नाउ। विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरेना शोरूम टुडे। TNC अप्लाई।

0: पनपता है।
1: घर में और आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर आदि को हर सप्ताह साफ करें। ऐसी कोई भी चीज जिसमें पानी जमा हो सकता हो उन्हें इधर उधर न फेंकें।
0: और प्यारे बचाव ही एक रास्ता है ए भाई।
2: श्रोताओं, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगला गीत हमने लिया है फिल्म इंतहा से। गीतकार राहत इंदौरी, संगीतकार अनु मलिक तथा गाने वाले कलाकार हैं शान और श्रेया घोषाल।

श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म इश्क का एक गीत। प्रवीण भारद्वाज के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया अनु मलिक ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम चित्र गीत के आखिर में लीजिए सुनिए श्रेया घोषाल और विनोद राठौड़ की आवाज़ों में मुन्ना भाई MBBS फिल्म का एक गीत। राहत इंदौरी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया अनु मलिक ने।

श्रेया घोषाल और विनोद राठौड़ की आवाज़ों में अभी आपने सुना मुन्ना भाई MBBS फिल्म का एक गीत, और इसी के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्र गीत अब यहीं समाप्त होता है।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 12 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए तेलुगु कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुर केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവിൽ 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെഡ്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

0: संस्थापकों से मुलाकात की। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हिमाचल प्रदेश में चंबा पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में 3 महीने के एक शिशु सहित 5 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। ये दिन हेपेटाइटिस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने, व्यक्तियों और आम जनता को कार्रवाई और भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर सभी नागरिकों से हरित, स्वस्थ और अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका शरण प्रणाली एसाइलम में बदलाव किया है जिसके तहत आव्रजन अधिकारी कुछ आवेदनों को साक्षात्कार लिए बिना ही आव्रजन न्यायाधीशों के पास भेज सकें। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में महिला शॉटपुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने और सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए शर्मिला को बधाई दी। हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ आज सुबह तमिलनाडु के कोयंबटूर में हुआ। ये थे FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
1: सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने सभी की सुरक्षा की भी कामना की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान 20 लोगों के मारे जाने और कई अन्य के घायल होने की खबर है। खबरों के अनुसार कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। JAAC ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है और आरोप लगा

कि जो हम शहर में आए अपने देर तलक चाहने वालों से लिपट कर रो।

0: पनपता है।
1: घर में और आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर आदि को हर सप्ताह साफ करें। ऐसी कोई भी चीज जिसमें पानी जमा हो सकता हो उन्हें इधर उधर न फेंकें।
0: और प्यारे बचाव ही एक रास्ता है ए भाई।
2: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
3: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
2: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
3: मैं 14 साल की हूँ।
2: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
3: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
2: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
3: धन्यवाद दीदी।
2: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल YouWin पर रजिस्टर करना मत भूलना।
4: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.youwin.mohfw.

0: gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:31 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी दोस्त श्री विद्या। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आपके ही द्वारा चुने गए गीतों की मनमोहक प्रस्तुति होगी। आपको करना बस इतना है कि अपने मनपसंद गीत का नाम, फिल्म का नाम और अपना पता लिखकर हमें व्हाट्सएप करना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9474234000। तो आइए बिना देर किए सुनते हैं पहला गीत जो हमारे श्रोता की ओर से हमें प्राप्त हुआ है। श्रोताओं, पहला गाना है फिल्म हेलो ब्रदर से। इस भेजने वाले श्रोतागण हैं हितेंद्र दास, धर्मवीर, स्कूल लाइन से पूर्णिमा और आदित्य, और ये सुनना चाहते हैं फिल्म हेलो ब्रदर्स का ये गीत।

श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है फिल्म फकीरा से। आवाज़ है हेमलता की और इस गीत को के लिए हमें फरमाइश आई है शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्नव, दुर्गेश्वरी राखी और तृप्ति का।

श्रोताओं, अगले गीत की फरमाइश हमें आई है नया गांव से वंश, संजना और हर्षिका का, और ये सुनना चाहते हैं फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम की आखिर में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में फिल्म प्रेम रोग का ये गीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं पूजा और अरुण डॉलीगंज से।

श्रोताओं, इसी के साथ ही समाप्त होता है आज का ये कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। आपके प्यार और भागीदारी से ही ये कार्यक्रम इतना खास बनता है। याद रखिए, हर दिन हर घड़ी आपके पसंदीदा गीत हम तक पहुंच सकते हैं। बस व्हाट्सएप कीजिए 9474-234-000 इस नंबर पर। कल फिर इसी समय दोपहर 1:30 पर मुलाकात होगी नए गीतों और नई पसंद के साथ। तब तक दीजिए अपनी दोस्त श्री विद्या को इस कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। पहले अंग्रेजी और उसके बाद हिंदी में, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

जरूर सुनिए शाम 4 बजे पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियर हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: एक प्रकार से PM जय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
2: समझ गया।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: जरूर सुनिए शाम 4 बजे पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियर हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।

0: विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम
1: 100.9 आपका हम सफर।

0: बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर।
1: जरूर सुनिए शाम 4 बजे पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियर हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।
0: श्रोताओं, इस समय दोपहर के 3:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम। यूं ही गाते रहो।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही गाते रहो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी दोस्त श्री विद्या। कहते हैं एक सच्ची मुस्कान कई अनकही बातों का जवाब बन जाती है। कभी कोई गीत हमें हंसा देती है तो कभी उम्मीद जगा देती है और कभी बस इतना एहसास करा देती है कि ज़िंदगी सचमुच बहुत खूबसूरत है। तो आइए आज के इस खास संगीत सफ़र में हम सुनेंगे कुछ ऐसे गीत जो दिल को हल्का करे, चेहरे पर मुस्कान लाए और मन में सकारात्मकता भर दे। जब हमारा मन खुश हो तो पूरी दुनिया अपने साथ मुस्कुराती हुई लगती है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

दोस्तों, ज़िंदगी हर पल बदलती रहती है और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। हर मोड़ कर मुस्क जीने की बात करता है ये।

भंवरे की तरह जब दिल भी गुनगुनाने लगे तो छोटी छोटी खुशियां भी बहुत खास लगने लगती है। आइए सुनते हैं ये मधुर गीत।

दोस्तों, दोस्ती सपने और खुलकर जीने का नाम ही तो जिंदगी है। वही ताजगी और वही मुस्कान लेकर आया है ये गीत।

कभी कभी जिंदगी को बस एक थैंक यू कहना चाहिए, जैसे हर छोटे बड़े पल को अपनाने का संदेश देता ये बेहद प्यारा गीत।

0: जरूर सुनिए शाम 4 बजे पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियर हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।
1: हर पल अनमोल है, जो समय अभी हमारे पास है वही सबसे खूबसूरत है। इसी भावना के साथ आज का अंतिम गीत।

तो श्रोताओं, यही कोशिश थी कि आज के इन गीतों के साथ आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाए। याद रखिए, खुशियां हमेशा बड़ी वजहों से नहीं, कई बार एक अच्छे गीत से भी मिल जाती है। और अब आपसे विदा लेने का समय हो चुका है। दीजिए श्री विद्या को इजाज़त। नमस्कार।

100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।

पिछले हफ्ते आज ही के दिन आपने सुनी थी आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। चलिए आज इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।

0: पत्नी को फिर छोड़ के लखनऊ और बंबई जाना पड़ा।
1: अरे खूब गाली पड़ी।
0: अच्छा,
1: दिमाग खराब हो गया आपका, क्योंकि तू बीवी को छोड़ के जा रहा है। बुरी बात थी कि तुम सरकारी नौकरी छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि सरकारी नौकरी में क्या मिलता है, सेफ्टी फॉर द फैमिली। पेंशन वाली नौकरी, आर्मी की नौकरी छोड़ के जा रहा है बेवकूफ, वो भी दूसरी बार। उनको हिम्मत नहीं थी, क्योंकि एक बार हार के आता ना आदमी तो हिम्मत नहीं होती। किसने हिम्मत दी? मेरी सिस्टर पैदा हुई, सुमन पप्पी,
0: उनकी पहली संतान, यानी आप लोगों की सबसे बड़ी बहन।
1: बड़ी बहन सुमन जब पैदा हुई तो 1956, उनको यह था कि मुझे बंबई जाना है। वो उनको आदत थी डायरी लिखने की, तो उन्होंने लिखा था कि मैं बंबई जाना चाहता हूं, लेकिन बंशी वाले का इशारा नहीं आया। बंशी वाला इशारा करेगा तो मैं जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही। इस बार अगर मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी तो ये वापस भी नहीं लेंगे, और शादी भी हो गई अभी, तो जिम्मेदारी आ गई है। तो बंसी वाले का इशारा होगा, मैं तब जाऊंगा।
0: ये इशारा कब हुआ?
1: ये इशारा हुआ 15 मई 1956, व्हेन सुमन वाज बॉर्न। उनको याद आया कि दादी कहती थी, क्योंकि दादी ने बड़ा किया ना। उनको याद आया कि दादी कहती थी कि कुड़ियां पियो के लिए गुड़ लग लांदी हैं।
0: वाह वाह,
1: मतलब एक जो लड़की आती है ना घर में,
0: पिताजी के लिए नसीब,
1: पिताजी के लिए नसीब लाती है, क्योंकि वो दुर्गा होती है। दुर्गा इज द फाइनल पावर।
0: ये इशारा
1: उनको याद आया, उन्होंने कहा ये इशारा मिल गया, अब तू वापस नहीं आएगा।
0: इस बार नौकरी पूरी छोड़ दी। द ईयर वॉज 1956।
1: फिर मुड़ के नहीं देखा पीछे।
0: गजब।
1: मैंने एक बार डैडी को पूछा कि डैड हम लोग चार हैं, दो भाई दो बहन, आपका फेवरेट चाइल्ड कौन सा है? ही सेड पप्पी,
0: सबसे बड़ी बेटी।
1: सबसे बड़ी बेटी। तो आई सेड क्यों क्यों, वो क्यों फेवरेट है, उसने क्या किया है जो हमने नहीं किया है? ही सेड उसने मेरी गरीबी देखी है। तुम तीनों मेरे अमीरी के बाद पैदा हुए थे, तुम्हें पता ही नहीं गुर्बत क्या होती है।
0: कमाल की बात कही है।
1: ही सेड मैं इसके लिए कंपस बॉक्स भी नहीं लिख सकता था।
0: ये नौबत उस लड़की ने देखी है।
1: 13 साल 14 साल।
0: जी जी।
1: तो तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरी सेवा करो जिंदगी भर, कुछ भी करो, लेकिन वो जो उसने जिंदगी देखी है तुम ख्वाब में नहीं देख सकते।
0: इतना प्यार था बड़ी बेटी से।
1: आप जिसको डिनाय करोगे ना उसको आप कभी भूलोगे नहीं।
0: बंबई में क्या हुआ जब वो यहां आए? कहां रहे? और वो
1: अलग अलग गेस्ट हाउस में, अलग अलग,
0: बल्कि एक बार तो रेलवे वेटिंग रूम में लंबे समय तक रहे।
1: हाँ, वो वेटिंग, जब वो पहली बार बंबई आए थे उन्होंने कृष्ण भगवान को एक चिट्ठी लिखी थी, मेरे प्यारे बंशी वाले, उसमें उन्होंने कृष्ण भगवान को कहा था कि आप देखिए ये बहुत जरूरी है सुनना, आप जानते हो दादागिरी क्या होती है, चाहिए अपने को भाई।
0: हाँ।
1: उन्होंने उस चिट्ठी में क्या लिखा है?
0: जी जी,
1: तो हमने छापी है, आपने ट्रांसलेट किया उसको?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लिखा है मेरे प्यारे बंशी वाले, ये जो सपना है ना, गीत लिखूं, गीत गाऊं, गीत को परफॉर्म करूं, गीत की धुन बनाऊं, ये तूने मेरे आंखों में डाले, अब तू इसको पूरा करेगा।
0: क्या प्यारी बात है यार। वाह वाह वाह वाह वाह।
1: मांगा नहीं है, आप सोचो पूरी दुनिया मांग रही है। अरे मेरे को ये दे दे भाई, मैं इतने ये दे दे तो मैं ये फास्टिंग करूंगा, ये दे दे तो मैं यहाँ चढ़ा। अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात, वो भी चलता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कल्चर। लेकिन यहाँ एक आदमी है जो कृष्ण भगवान को बोल रहा है तूने ये सपना डाला ना मेरे आंख में, अब तू पूरा कर इसको।
0: तो कृष्ण पर उनका इतना ज्यादा विश्वास था, इतनी भक्ति थी कि पर्स में भी कृष्ण होते थे, और कई बार उन्होंने बंसी वाले को चिट्ठियां लिखी।
1: बड़ा नटखट है तू
0: कृष्ण कन्हैया, क्या बात है। ये गाना भी बख्शी साहब का।
1: सर वो गाने में एक जो मेरा जो फेवरेट वर्स है ना,
0: हाँ,
1: मेरे जीवन का तू एक ही सपना, जो कोई देखे सोचे समझे वो अपना।
0: वाह,
1: लाइन है यार, आप सोचो।
0: वाह वाह,
1: क्या कहनी चाहते लोगों से कि मुझे गाड़ी मिल जाए ऐसे, या मुझे ऐसे धंधा मिल जाए, लेकिन यहाँ ये बोल रही है कि मेरा बच्चे का एक, मेरे लिए मेरे बच्चे के लिए एक ही सपना है, इसको जो मिले ना, सोचा यार इसका हाथ मेरा होता,
0: क्या
1: इससे बड़ी दुआ है क्या दुनिया में?
0: नहीं,
1: हाँ,
0: क्या गजब।

0: इन माई जॉब आई वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर, ही वॉज द चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर शाकिर खान। शाकिर खान ने बख्शी साहब का इंटरव्यू लिया सुभाष जी के लिए। क्वेश्चन सुभाष उन्होंने पूछा था बख्शी साहब को कि बख्शी जी आपको कब लगता है कि आप फेल हो गए हो एज अ राइटर। ही सर मुझे जब भी मुझे कोई बोलता है ना कि ये गाना मैंने सुना मुझे लगा ये बख्शी साहब ने लिखा है, मुझे लगा मैं फेल हो गया हूं।
1: गजब।
0: क्योंकि एज अ लिरिसिस्ट माई वॉइस हैज टू बी हिडन। अगर मेरी आवाज लग रही है आपको इस गाने में कि ये लफ्ज बख्शी साहब के हैं तो ये वो मेरा फेलियर है,
1: क्योंकि वो कैरेक्टर का गाना नहीं लग रहा है।
0: कैरेक्टर गाना नहीं लग रहा।
1: बहुत गहरी बात है।
0: इसलिए वो मिलन फिल्म में वो गाना डिलीट करवाया बख्शी साहब ने। मिलन फिल्म में गाना है नूतन का जो डिलीट किया, लता जी का गाना है, यूट्यूब में आपको उसका वीडियो नहीं मिलेगा कहीं भी। तो मिलन फिल्म लगी, देखी उन्होंने, आज दिल पे कोई जोर
1: जोर
0: चलता
1: चलता नहीं,
0: नहीं,
1: मुस्कुराने चले थे मगर रो
0: रो
1: पड़े।
0: पड़े। तो जब फिल्म देखी प्रीमियर में, बख्शी साहब घबरा गए। गिवन एंड टोल्ड द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को बोला कि ये गाना निकाल दो फिल्म से, फिल्म रिलीज हो गई है तो क्यों निकालूं, ये गाना मैंने गलत लिख दिया। तो कैसे गलत लिख दिया, कितना अच्छा गाना है सर, दैट कैरेक्टर इज अनएडुकेटेड, शी कैनॉट स्पीक सच हाई लिटरेचर वर्ड्स। प्रोड्यूसर को बोला है सर लिसन टू हिम, ही इज टॉकिंग सेंस, क्योंकि वो सब इंग्लिश में बात करते थे साउथ वाले।
1: साउथ की फिल्म थी।
0: ही वॉन्ट्स टू रिमूव द सॉन्ग, ही इज द राइटर ऑफ द फिल्म, वाई वॉन्ट टू रिमूव द सॉन्ग, ही थिंक दिस इज नॉट माई वर्ड्स, दिस आर माई वर्ड्स, दिस नॉट द वर्ड्स ऑफ द कैरेक्टर। उसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो ये वर्ड्स बोल ही नहीं सकती वो।
1: क्या
0: आज
1: बात
0: दिल
1: है,
0: पे कोई जोर
1: जोर
0: चलता
1: चलता
0: नहीं,
1: नहीं।
0: मुस्कुराने लगे थे मगर रो पड़े।

एक बार हमारे घर में पार्टी हुई थी, डैडी के दोस्त का बर्थडे था, मिस्टर वीके मेहता, तो बख्शी साहब ने गाना गाना शुरू किया, तो एक लाइन गाए और वीके मेहता साहब ने बोला बख्शी साहब ये बहुत सैड गाना है, इसको मत बजाइए, खुशी का माहौल है। तो बख्शी साहब ने रविंद्र टैगोर को कोट किया।

0: और हमारे घर में डैडी जब तक थे, रविंद्र टैगोर की फोटो
1: जी
0: हमारे हॉल में थी, रविंद्र टैगोर की फोटो। ही सेड टैगोर ने कहा है द हैप्पीएस्ट सॉन्ग्स आर द सैड सॉन्ग्स, क्योंकि जब तक आपके आंख से आंसू नहीं निकलेगा यू विल नॉट स्माइल, टियर कम्स फॉर यू टू स्माइल।
1: आंसू जो है वो मुस्कानों के लिए रास्ता बनाते
0: और
1: हैं।
0: आंसू मुस्कान के लिए रास्ता बनाते हैं। तो आपने बहुत अच्छा कहा कि आंसू मुस्कान का रास्ता है।
1: जब बंबई आए और अलग अलग जगह स्ट्रगल कर रहे थे तो एक टिकट चेकर ने उन्हें पकड़ लिया
0: अरे
1: था,
0: कमाल है वो तो।
1: वो कहानी बताइए।
0: जय हो, मैं सुबह जब उठता हूँ तो मैं भूमि अग्नि वायु आकाश जल ईश्वर का नाम लेता हूँ, साथ में चित्रमल जी का नाम लेता हूँ, हमारे पितरों का नाम लेता हूँ, एंसेस्टर्स, और चित्रमल जी का। चित्रमल जी कौन है? वेस्टर्न रेलवे टिकट कलेक्टर थे। जब 6 महीने में वो हार गए, सेकंड टाइम पैसे खत्म हो गए, तो वापस उन्होंने सोचा अभी तो वापस जाना पड़ेगा, तो वो मरीन ड्राइव स्टेशन में जाके बैठ गए कि यहाँ से ट्रेन पकड़ूंगा, दादर जाऊंगा, फिर दादर से सीधा डायरेक्ट फ्रंटियर मेल या पंजाब मेल पकड़ के वापस लखनऊ जाऊंगा। लखनऊ में मैके छोड़ के आए थे मम्मी को और बेटी को। तो वहाँ पर एक टिकट कलेक्टर आया, उन्होंने पकड़ा बख्शी साहब को, बोला टिकट दिखाओ। बोला टिकट नहीं है, फाइन भरो। तो बोला फाइन के लिए पैसे नहीं है। बोला भाई टिकट के पैसे नहीं है, फाइन के भी पैसे नहीं है, कौन हो तुम, क्या करते हो, क्या लिख रहे हो इधर बैठ के, मैं देख रहा हूँ तुमको, मैं 4-5 चक्कर लगाया, तुम इधर बैठ के कुछ लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, बस सुनाओ। बोले मैं कविता लिख रहा हूँ। अच्छा कविता लिख रहे हो, वो कविता का शौकीन था, फिल्मों का शौकीन था, उसका
1: जी
0: हर गाना मालूम था। आप देखो क्या चमत्कार ईश्वर का। अपना आगरे के रहने वाले, क्या कर रहे हो? बोले मैं गीतकार बनने आया था, वापस जा रहा हूँ। क्यों वापस जा रहे हो? काम नहीं मिला। अच्छा क्या लिख रहे हो उधर, आज क्या लिखा है, सुनाओ। सुनाया। अच्छा कुछ और सुनाओ। और सुनाया 3-4 उसने कविता सुनी बख्शी साहब की। बोले तुम वापस मत जाओ। तो बोला मेरे पास तो पैसे ही नहीं है रहने के लिए बम्बई में। तुमने जो लिखा है वो जो आज के बड़े बड़े गीतकार है उसके लेवल का है। मैं तो बचपन से सुनते आ रहा हूँ गाने, मुझे पता है कि आप तुमने ये तुम्हारी बहुत अच्छी लिखा है, मेरे को लगता है कि तुम्हारा हो जाएगा इस शहर में, लेकिन मैं रहूंगा कहाँ, ये तुम मेरे साथ रहो। घर ले गया उनको, 3 साल रखा उसने घर पे। हाँ
1: बोरीवली में।
0: पैसे भी नहीं लिए,
1: तो
0: और
1: चित्रमल
0: जिंदगी भर
1: स्वरूप
0: मरते
1: जी,
0: तक दम तक पैसे नहीं मांगे बख्शी साहब से कभी।
1: चित्रमल स्वरूप जी बख्शी साहब को अपने घर लेके आए। अब एक आसरा हो गया, यहां से स्ट्रगल किया जा सकता था।
0: हाँ
1: मैंने
0: करेक्ट।
1: सुना है कि वो उनको जेब खर्च भी दिया करते थे।
0: हाँ कभी कभी कुछ 5-10 पैसे या 50 पैसे 25 पैसे दे सके, या आज स्ट्रगल करके आके इधर नौकरी काम ढूंढ के आया, वो हिसाब से। तो उनका एक बड़ा अच्छी पॉलिसी थी, उनको था कि मैं रोज जब तक 5 लोगों को नहीं मिलूंगा घर नहीं जाऊंगा वापस। एक बार वो अपना फिल्मिस्तान स्टूडियो में उनको मिले, रोशन साहब को, बहुत कोशिश की, रोशन साहब को नहीं, रोशन साहब नहीं मिलते थे, यू द वेरी बिग स्टार एट दैट टाइम रोशन
1: बिल्कुल
0: साहब,
1: बिल्कुल
0: 1956। रोशन साहब ने ऐसे ही बोला अच्छा अच्छा ठीक है तुम कल सुबह आ जाओ मेरे घर पे। बोले सर आप कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने लिख के दिया लिंकिंग रोड सेंटा क्रूज, लिख के एड्रेस लिख के दिया, तुम कल सुबह 10 बजे आ जाओ, जो तुमने कविता लिखी मैं सुन लूँगा। तो चले गए वापस बोरीवली और ज्वालानगर, तो वहाँ चले गए और ज़बरदस्त बारिश हुई, जैसे बम्बई में बारिश हुई 2 दिन वैसे, और पूरा पानी भर गया, इतना पानी भर गया कि ट्रेन तो बंद हो जाती थी तब, बहुत जल्दी ट्रेन बंद हो गई और BST बस भी बंद हो गई। अब बोले यार ये तो 10 बजे का टाइम दिया इसने, अभी आर्मी में थे तो उनको आर्मी में जब सुबह ले जाते थे ना मार्चिंग या रनिंग, तुमको पता रहता था कि इतने हमको इतने किलोमीटर इतने टाइम में कवर करने के लिए हमको इतने स्टेप लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने कैलकुलेट किया अगर मैं बोरीवली से सेंटा क्रूज लिंकिंग रोड वेस्ट चल के जाऊं तो कितने घंटे लगेंगे, तो वो हिसाब से उन्होंने चलना शुरू किया बरसात में, और रास्ते में छतरी भी टूट गई। बिल्कुल 10 बजे उन्होंने घंटी बजाई, उनकी बीवी ने दरवाजा खोला तो बोले भाई कौन हो तुम, पूरे अजीब सा आदमी, पूरा गीला, कपड़े गीले, किताब गीली, ऐसे खड़ा है। बोला मुझे साहब ने, सर ने बुलाया, रोशन सर ने बुलाया। अच्छा ठीक है, रोशन साहब आए। बोला अरे भाई क्या हो गया, आपने मुझे बुलाया था,
1: पागल हो
0: इतनी
1: गया।
0: बरसात में क्यों आए तुम, इसे आपने मुझे बोला था ना आने के लिए आप मेरा गाना सुनेंगे। इसे हाँ लेकिन इतना जरूरी नहीं था।
1: हाँ, उन्होंने कहा बख्शी तुम पागल हो क्या।
0: हाँ तुम पागल हो क्या तुम, इसे सर आपके लिए जरूरी नहीं था, मेरे लिए जरूरी था।
1: क्या
0: वो
1: बात
0: सारा
1: है।
0: एकदम चौंक गया हुआ आदमी, उसको लगा कि सारे ये तो अलग ही आदमी है। उसने टोलिया दिया, उसको पहले सुखा किया, चाय पिलाई, बोला अच्छे सुनाओ, तो
1: हाँ,
0: उन्होंने उनको बेदाग फिल्म में गाने दिए।
1: वाह वाह वाह वाह, यहां से
0: और
1: शुरू होता
0: बेदाग
1: है।
0: के गाने क्यों जरूरी हैं,
1: जी
0: ये जो किस्सा है क्यों जरूरी है उनकी जिंदगी के लिए, क्योंकि उनकी भला आदमी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। फ्लॉप आदमी को काम नहीं मिलता हमारी इंडस्ट्री में, चढ़ते सूरज को सलाम है। रोशन साहब ने उनको जो लिया ना फिल्म में, सबको पता चल गया इंडस्ट्री में कि यार ये कौन है, तो उनको काम मिलना शुरू हुआ।
1: सोचिए कि शकील के नगमे थे,
0: तो
1: उसमें बख्शी साहब को
0: जब
1: बीच में मौका
0: राजेश
1: मिला था।
0: रोशन हमारे घर आए,

0: 1970 में जूली फिल्म के गाने लिखवाने, तो राजेश रोशन की ये लव्स हैं। कभी आप उनको मिलेंगे तो पूछना कि तुम्हारे डैडी ने मुझे बोला था कि तेरे लिए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तू रोशन का बेटा है, तेरे फादर ने मुझे सेकंड चांस दिया था इंडस्ट्री में।
1: वाह वाह,
0: और उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने भूल गया सब कुछ, कुछ 2-3 हफ्ते लिए गाने लिखने में, लिखते और फाड़ देते, लिखते और फाड़ देते, लिखते और फाड़ देते। वो बोला मैं पक गया, मेरे को लगा बख्श साहब गाने लिखना भूल गए हैं। लेकिन जब बख्श साहब ने मुझे गाने दिए, अनफॉरगेटेबल सॉन्ग दिए मुझे जूली में, और इतनी मेहनत की बख्श साहब ने मेरे लिए कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, कि बिकॉज आई वॉज रोशन सन।
1: कितनी
0: इतना
1: इज्जत,
0: बड़ा काम किया होगा रोशन साहब ने ये आदमी के लिए कि ये 15-15 दिन ले रहा है गाना लिखने के लिए, जो तो आधे घंटे में लिख देता है।
1: रोशन साहब के लिए बख्शी साहब ने लिखा, आया है मुझे फिर याद वो
0: देवर,
1: जालिम, गुजरा जमाना
0: हाँ
1: बचपन का।
0: देवर द लास्ट फिल्म टुगेदर।
1: जी।

0: nga chinta hei hang mane din ge ge extension thompson asara ki hoi hang dal nga hang nga chinta nga mu hek in hore chang rong in ta ka sat i the fan kai ro ta la harap nga yen
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 4:30 हुए हैं। अब सुनिए सुगम संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत के कार्यक्रम में महेंद्र कपूर की गाई चंद गजलें सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 4:40 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ देर बाद यानी 4:45 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा बहारों की शाम। शाम 5 बजे तमिल में महिलाओं के लिए कार्यक्रम सुनिए महलेर उल्लगम। बंगला कार्यक्रम में शाम 5:30 पर आप लोकगीतों का आनंद ले पाएंगे। संध्या 6 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में नारियल, सुपारी व पशुपालन से जुड़े किसान नमूना घर निवासी श्री देवेन से की गई बातचीत आप सुन पाएंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा शामे बहार संध्या 6:30 पर। 7:15 पर सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया 7:20 पर। 7:30 पर युवाणी के तहत कार्यक्रम होगा देश की शान। रात 8:15 पर फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। रोजगार समाचार का समय रहेगा रात 8:30। रात्रि 10 बजे FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए छाया गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। और रात 10 बजे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेश से आते हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक और 9:45 पर मंथन कार्यक्रम होगा।

जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम, और अब एक नज़र डालते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल प्रातः 5:23 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। एग्री टिप्स कार्यक्रम में प्रातः 5:55 पर जानकारी का विषय रहेगा सब्जियों में एकीकृत पोषक तत्व। जलयानों का यात्रा कार्यक्रम 6:10 पर। 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा अफसाना शीर्षक पर। रामचरितमानस गान सुनिए 6:30 पर। मौसम की जानकारी, कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 6:50 पर। जन सूचनाएं सवेरे 7 बजे। 7:15 पर देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा देश रागिनी। 7:15 पर ही FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए भूले बिसरे गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 7:30। सुबह 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में रेशमा, कविता पौडवाल और जसवंत सिंह की गाई चंद गजलें आप सुन पाएंगे। फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा तराने सुहाने सवेरे 9 बजे। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप पद्मा तलवलकर का गायन सुनेंगे। फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा गीत गाता चल सुबह 10 बजे। दिन के 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए NCERT। 11:30 पर फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रलोक। तेलुगु में दोपहर 12 बजे महिलाओं के लिए कार्यक्रम सुनिए वनिता वाणी। दोपहर 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा। दोपहर 1:10 पर महफिल कव्वाली कार्यक्रम में कव्वाल होंगे कलंदर आज़ाद और अजीज नजा। दोपहर 1:30 पर व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद हमारे स्थानीय सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारी स्थानीय सभा जारी रहेगी हमारे लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स के साथ। दोपहर बाद 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी कल शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का समय रहेगा 4:30। 4:40 पर कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। फिल्म गीतों का कार्यक्रम सुनिए बहारों की शाम 4:45 पर। शाम 5 बजे तमिल में आप एक ही संगीतकार के कुछ गाने सुन पाएंगे। बंगला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 4:45 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था फिल्म तुम बिन से। आवाजें थी अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की, फैज़ अनवर के शब्द थे, निखिल विनय का संगीत था। आइए अब सुनते हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की मिलीजुली आवाजों में फिल्म खिलाड़ी 420 का एक गीत। तर्ज बनाई है संजीव दर्शन ने, बोल समीर के हैं।

शमशाद बेगम के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब सुनिए तमिल कार्यक्रम।

0: अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6 बजे हैं। अब सुनिए किसानवाणी कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।

किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहनों और भाइयों को शिवानी का नमस्कार और साथियों आप सभी का आज के हमारे इस अंक में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन। किसान साथियों, कहते हैं कि माली चाहे किसी पौधे को 100 घड़े पानी से भी क्यों ना सींच दे, लेकिन उस पौधे पर फल केवल अपने सही मौसम और सही समय में ही आते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी उतावले मत बनिए, अपनी मेहनत और लगन पूरी रखिए और सही समय का इंतजार कीजिए, आपको आपके शुभ कामों का फल जरूर मिलेगा। आज की इन्हीं प्यारी सी बातों के साथ अब हम कार्यक्रम का आगाज करते हुए आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। और साथियों, आज आपको बताना है पेन्यूर किस फसल की किस्म है। 3 विकल्प भी इसके आपको बता रहे हैं, काली मिर्च, लौंग या फिर दालचीनी। भाइयों, प्रश्न हम एक बार फिर दोहरा देते हैं। साथियों, आज आपको बताना है कि पेन्यूर किस फसल की किस्म है। 3 विकल्प, काली मिर्च, लौंग या फिर दालचीनी। आप इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहें, कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम के अंतर्गत हम इस प्रश्न का सही उत्तर आपको अवश्य ही बताएंगे।

0: स्वच्छता रेन अभियान भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय जल संरक्षण अभियान है। इसका उद्देश्य वर्षा जल की प्रत्येक बूंद को बचाना और उसका अधिकतम उपयोग करना है। अभियान का नारा है, जहां बारिश हो, जब भी बारिश हो, वर्षा जल को संचित करो। अभियान के मुख्य उद्देश्य हैं भू जल स्तर को सुधारना, जल की बर्बादी को रोकना, तालाबों, कुओं और जलाशय का संरक्षण एवं पुनर्जीवन करना, लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना। और भाइयों, अभियान के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य हैं घरों और सरकारी भवनों में वर्षा के जल संचयन प्रणाली स्थापित करना है, तालाबों, झीलों और कुओं की सफाई एवं मरम्मत करना, नए जल संरक्षण ढांचे बनाना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, गांव और शहरों में जल संरक्षण संबंधी जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। इस अभियान से भविष्य में जल संकट को कम करने में सहायता होगी, किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा, भू जल स्तर बढ़ने से पेयजल की उपलब्धता में भी सुधार होगा, साथ ही पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। ये अभियान जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। तो साथियों, इस अभियान के साथ जुड़े, जल को संरक्षित करें और जीवन को खुशहाल बनाए, क्योंकि जल ही जीवन है। साथियों, अब हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं नारियल सुपारी व पशुपालन से जुड़े एक किसान भाई, जो कि नमूना घर के निवासी हैं, श्री देवेन जी से। तो चलिए भाइयों, करते हैं इनसे मुलाकात और जानते हैं इनके अनुभव।
1: श्री देवन जी मौजूद हैं और देवन जी जो है ये नारियल सुपारी के बगीचे के साथ साथ कुछ पशुपालन और सब्जी की खेती भी करते हैं। देवन जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्ते
1: देवन जी, हम जानते हैं कि आपके पास नारियल सुपारी के बागान है, तो बताइए कि कितने बड़े बागान है?
2: छोटा सा बागान है जी, 80 पेड़ का लगभग।
1: 80 पेड़, तो 80 पेड़ में क्या नारियल के 80 पेड़ है?
2: हाँ, नारियल
1: और सुपारी के?
2: सुपारी के कम से कम 15 पेड़।
1: 15 पेड़ सुपारी का, तो एक ही बागान में दोनों पेड़ लगे हुए हैं। अच्छा, तो पहले बात करते हैं नारियल की। नारियल के फल एक साल में क्या 2 बार मिलते हैं आपको?
2: हाँ, 2 बार तो मिलता है, इतना फलता नहीं है।
1: अच्छा, कितने हो जाते होंगे फिर भी एक बार में?
2: एक बार में आपको क्या होगा, 500 किलो गलत होगा
1: जी,
2: फिर दूसरा ट्रिप आएगा 300 किलो होगा।
1: अच्छा, एक बार फसल लेने के बाद कितने टाइम बाद दोबारा मिलता है?
2: कितना टाइम मिलता है? 6 महीने के बाद मिलेगा।
1: 6 महीने के बाद मिलेगा। अच्छा, तो नारियल की जब पहली फसल आती है तो उसमें आपको मतलब कितने तक नारियल हो जाते होंगे? नारियल की संख्या में बताइए।
2: नारियल होगा तुम्हारा एक 600 नारियल का हो जाता है।
1: 600 तक हो जाता है ना, तो एक नारियल का क्या भाव मिलता है बाजार में?
2: तो इधरी कंपनी है ना, यही डाल देता है, कभी चढ़ता कभी उतरता, कभी 20 रुपया, कभी 25 रुपया, कभी 28 रुपया।
1: अच्छा,
2: केजी
1: के हिसाब से मिलते हैं। अच्छा, तो कितनी इनकम हो जाती होगी आपको?
2: हो जाता है 10,000 रुपए का हो जाता है।
1: नारियल के जो ये पेड़ है, इनकी तैयारी आप किस तरह करते हैं?
2: वो तो एग्रीकल्चर से हम लोग जाल लेके करा हुआ है, कितना फीट में है, 10 फीट 15 फीट दूर में करना पड़ता।
1: एक पेड़ लगाने के 10 फीट के बाद दूसरा पेड़ लगता है,
2: नारियल का पत्ती टच नहीं,
1: आपस में टच नहीं होना चाहिए, मतलब दूर दूर रहने चाहिए। बागान में इसी हिसाब से के पेड़ लगाए हैं। नारियल की पैदावार बढ़े उसके लिए आपने कुछ इंतजाम किया है?
2: हम फलता है काटता है उसको,
1: नहीं कोई खाद वगैरह
2: होता है? खाद वगैरह ला के डालता है, फिर साइड में अगल बगल खोदता भी है
1: जी,
2: कि उसको जड़ को एक
1: मजबूती मिलनी चाहिए, और कोई भी मतलब आगे पीछे रोग ग्रस्त या खरपतवार वो सब चीजों का ध्यान आप रखते हैं?
2: बराबर
1: रखते हैं। इसके बावजूद भी कभी कोई कीड़ा लगना या कोई बीमारी आपने पेड़ों में देखी?
2: कीड़ा लगता था मतलब उसको बोल देता, एग्रीकल्चर वाला दवाई देता, फिर दवाई थोड़ा छिटका मारता, ये चूहा भी जाकर डाक को पीता।
1: तो इनको कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते हैं?
2: वो एग्रीकल्चर दिया है तो पेड़ बांध देगा, चूहा नहीं चढ़ेगा, वो क्या है इसका दवा।
1: अगर चूहा इस तरह से नारियल के पेड़ तक चढ़ जाता है तो ये तो काफी नुकसान करता होगा।
2: नुकसान होता है,
1: तो उसका कुछ उपाय तो आपने किया होगा ना इससे बचने का?
2: वो पेड़ का जरा गुलाई में बांधता है।
1: क्या बांधते हैं?
2: एक टेना का तरह है, उसमें कोई दवाई डाल के बांध देता है
1: ताकि चूहा उसके अंदर आ जाए। उससे फायदा होता है कुछ?
2: फायदा नुकसान तो होते ही रहता है।
1: अच्छा, आप बताइए सुपारी की बात आपने की।

0: आपके बागानों में सुपारी भी है। सुपारी की कितने पेड़ है?
1: 15 पेड़ है।
0: 15 पेड़ है। 15 पेड़ जो है ये पूरे फलते हैं?
1: हाँ फलता है।
0: कैसा फल आता है इसमें?
1: साल में एक ही बार फलता है।
0: नहीं तो जब फलता है तो वो उसकी पैदावार अच्छी होती है?
1: कभी अच्छा भी हो जाता है, कभी खराब भी हो जाता है।
0: देखिए बागानी फसलें हैं ये तो पूरी तरह से मौसम पर निर्भर होती है ना। ये हम कह ही नहीं सकते हैं कि पैदावार कैसी होगी, कभी बहुत अच्छी हो जाती है और कभी जो है नुकसान का सामना करना पड़ता
1: है,
0: कभी नहीं भी फलता है। तो आपने क्या देखा है कि सुपारी से आपको अच्छा उत्पाद मिलता है?
1: हाँ मिल जाता है, 100 केजी का मिल जाता है।
0: फल तोड़ने के बाद बाजार तक पहुँचाने तक क्या प्रक्रिया होती है? उसको तोड़ने के बाद सुखाना, शहर से निकालना, सुखाने के लिए आपके घर में जगह है या आप अपने बागान में ही? कोई
1: घर के सामने एक बड़ा वरांडा है,
0: वरांडा है, वहाँ धूप अच्छी आती है, वहाँ पर सुखाने से पूरी तरह से सूख जाती है। सूख जाने के बाद उसका भंडारण कहाँ करते हैं?
1: बस्ता में भर के घर में रखते हैं।
0: घर में मतलब ऐसी जगह है ना कि जहाँ चूहे कीड़े या सीलन इस तरह की कोई चीज तो नहीं है कि जिससे कि वो रखे हुए सामान को नुकसान पहुँचा
1: है? नुकसान
0: नहीं पहुँचता है, सीधे मार्केट पहुँच जाता है।
1: गाँव में भी बिक्री हो जाता है।
0: गाँव में लेने वाले आपके घर तक आ जाते हैं?
1: आ जाता है। ज्यादा सुपारी कम से कम 10,000 केजी होना तो बाजार जाएगा,
0: तब बाजार जाते हैं।
1: 100 केजी सब क्या बाजार जाए?
0: ठीक है, तो अगर ज्यादा होता है तो आप बाजार लेके जाते हैं और अगर कम होती है तो आपका घर से ही निकल जाता है। दाम कैसे मिलते हैं?
1: दाम क्या मिलता है, 300 रुपया 250 रुपया मिलता है केजी का।
0: कितना केजी तक हो जाता है सुपारी?
1: वही बोला ना, 100 किलो भी हो जाता।
0: जब 100 किलो होता है तब तो अच्छा फायदा है, और अगर कम होता है तो भी आपको दाम जो है वो इतना ही मतलब इसी के हिसाब से मिलता है, 300 रुपए केजी के हिसाब से।
1: 300 में 250,
0: 300 और 250 के हिसाब से है।
1: ठीक है, हमारे गुजारा तो चल रहा है, उसी से गुजारा चलता है।
0: नारियल और सुपारी दोनों को मिला जुला कर आपका मतलब इतना तो आ जाता है ना कि जिससे आपका घर परिवार का जो भरण पोषण है वो आराम से हो रहा है।
1: बराबर।
0: अब हम आ जाते हैं पशुपालन पर। देवन जी, हमने ये भी सुना है कि आप कुछ पशुपालन बकरी पालन से भी जुड़े हुए हैं। कितनी बकरियां हैं आपके पास?
1: 10 बकरी।
0: 10 बकरियां हैं। बकरियों के लिए भी क्या आपने कोई जगह जो है वो कहाँ रखी हुई है?
1: शेड बनाया हुआ है।
0: घर में ही है?
1: नहीं, शेड है, उसका मचान है।
0: नहीं, मचान जो बनाया है जहाँ आप रह रहे हैं वही साइड पे जगह ले के?
1: अपनी जमीन में बना।
0: जहाँ आप रह रहे हैं वही साइड पे जगह रख के शेड बनाया है आपने और वही आपकी बकरियाँ रहती है? 200 बकरियों के लिए जो स्थान है वो बिल्कुल सही है?
1: सही।
0: कहीं ऐसा तो नहीं कि आपस में बकरियां जो है वो लड़ने लगे या उनके लिए जगह ना रहे?
1: खुली
0: जगह
1: नहीं।
0: साफ सफाई का क्या इंतजाम है?
1: सफाई हम लोग करते हैं, डेली सफाई करते हैं।
0: डेली सफाई करते हैं, कीटाणु नाशक वगैरह कुछ डालते हैं ना?
1: हाँ डेली सफाई करना, पानी डाल के सफाई करना बकरी के, नहीं तो बकरी सही रहे।
0: बिल्कुल। बकरियों में कभी कोई बीमारी देखी आप?
1: हाँ बीमारी देखा है, जो यहाँ का जो बारिश है ना
0: जी,
1: यहाँ का बारिश में तो गाय है बकरी है बराबर बिकता है।
0: हाँ
1: चरने जाता है।
0: हाँ हाँ,
1: उसमें बकरी को बीमारी आता है सर्दी खांसी
0: इन्फेक्शन। तो इसके लिए आपने कोई वैक्सीन वगैरह कभी कराई है?
1: नहीं, दवाई देते हैं तो पिलाते हैं
0: तब ठीक हो जाती है उससे।
1: अगर आपका कैरी वाला सब लोग दवाई, उसमें खांसी सर्दी कम होता है।
0: जो घरेलू उपाय है उसको करने से जो भी खांसी सर्दी है उस पे तो काबू हो जाता है। कभी कभी बकरियों में कोई भयानक बीमारी हो जाती है, बड़ी बीमारी हो जाती है जो इन चीजों से काबू नहीं होती, तो ऐसे में क्या करते हैं?
1: फिर आप डिस्पेंसरी जाना पड़ता है, टांग भी लगना हो जाता है कभी कभी, जैसा चलेगा।
0: अच्छा, बहुत सारी वैक्सीन भी है, अगर आप वेटनरी से कांटेक्ट रखेंगे तो आपको पता चलेगा जिनको लगा देने से बकरियों में बीमारी जो है वो कम आएगी।
1: तो सुबह शाम उसमें ध्यान ही तो रखता
0: है। नहीं, ध्यान रखते तभी आपके पशुओं से अच्छा उत्पाद जो है वो ले पा रहे हैं। बकरियों से आपको क्या उत्पाद मिलता है?
1: ये बकरा बच्चा पटिया बच्चा जब देते हैं
0: जी,
1: उसको बच्चा लोग का 3 महीना बहुत केयरफुल देखना पड़ता है
0: जी।
1: कभी कुछ खाएगा पेट फूल जाएगा, फिर उसको टाइम से दवाई पिलाना। वो 3 महीना का अंदर नहीं देखे बकरी बच्चा मर जाएगा। 3 महीना उसका एकदम वो जाके घास पकड़ने चला, घास पकड़ लिया फिर डालने।
0: अच्छा,
1: कि वो माँ का दूध भी पीते हो
0: जी,
1: फिर वो दूध का पीछे कहीं मट्टी उट्टी कहीं चाट लिया तो बस पेट फूल जाएगा। पेट फूलने से उसको हमको बहुत ध्यान से देखना पड़ता
0: जी।
1: 3 महीना तो देखना ही पड़ेगा बकरी बच्चा को, क्योंकि बारिश का टाइम है ना।
0: मतलब आपका कहने का मतलब है कि बारिश का टाइम जो है वो बकरियों के लिए बहुत सेंसिटिव टाइम है, और इस टाइम पे जब बकरियां बाहर चरने जाती हैं तो उनके बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है।
1: पत्ती रहता ना, उसमें कीड़ा मकोड़ा रहता।
0: बिल्कुल, और वो खा लेती है।
1: खाने से क्या करे, बकरी को भी पेट भूल जाता। कैरी से दवाई ला के रखा हुआ है।
0: अच्छा,
1: वो हजम होने का
0: जी।

0: इंजेक्शन में पिला, मुँह खोल के पिलाते हैं हम लोग
1: तो ठीक हो जाती है।
0: और ठीक हो जाता है, हजम हो जाता है।
1: आप कैसे पहचानते हैं कि आपकी बकरियां बीमार है, क्या लक्षण होते हैं उसके?
0: एक्चुअली उसको खुद मालूम होगा ना, चलेगा नहीं और तब तड़पना शुरू करेगा और पेट खुलेगा।
1: तो इन सब चीजों को देख के आपको पता चल जाता है कि बकरी बीमार है,
0: बीमार है।
1: और आप उसका फिर इलाज जो है
0: दवाई वही खिलाना।
1: बकरियों से आपको कितनी इनकम हो जाती है, मतलब बकरी पालन आपके लिए किस तरह से फायदे का सौदा है? आप
0: बकरी फायदा तो है, बकरी
1: जी
0: उसको देखभाल करेगा, उसको सेवा करेगा, फायदा तो है
1: बिल्कुल।
0: बकरा एक 5-6 हजार दे दिया तो कम से कम साल में 50 हजार रूपए मिलेगा।
1: हाँ तो अच्छा ही है ना बिल्कुल। और कभी आपात में कोई परेशानी आ जाती है, पैसे की जरूरत होती है, अगर आपके पास बकरे हैं तो आप सेल करेंगे उसको तो आपको एक मोटी रकम मिल जाती होगी?
0: नहीं, ये जो बकरी पालन हम लोग करता है इसलिए ना, ये छोटा मोटा घर का तकलीफ के लिए अर्जेंट में काम आए।
1: बिल्कुल,
0: ये गाय जल्दी से नहीं बिक्री।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये बकरी है मुर्गी, कोई तकलीफ हो गया, कोई बीमार हो गया घर का अंदर,
1: बिल्कुल
0: कि उससे हम लोग को जल्दी बोले भाई खरीद के लेके चले जाए।
1: बिल्कुल,
0: गाय जल्दी नहीं खरीदता।
1: मतलब कहने का आपका यही मतलब है कि कभी कोई परेशानी हो जाए जिसमें पैसे की जरूरत हो तो आप अपनी बकरी या बकरे को सेल करके आपका पैसे का इंतजाम है वो तुरंत हो जाता है।
0: घर का बीमारी उमारी आता, बच्चा लोग बीमारी आती, तंगी लेना छोटा जानवर जल्दी बिक्री होता।
1: बिल्कुल,
0: नहीं बकरी और लेना हम लोग जमा करके रखते हैं, वो खाद के लिए रखता है, कोई लौकी पेड़, कोई भिंडी पेड़, कोई छोटा मोटा उसको गाड़ने के लिए हम लोग बनाता है ना,
1: वो भी उपयोग हो जाता है खाद के रूप में। बिल्कुल, तो देवन जी आपने बताया कि आप नारियल सुपारी के बागान करते हैं, साथ में आप पशुपालन में बकरी पालन करते हैं, और ये तीनों ही काम जो है ये आपके लिए फायदे के सौदे हैं क्योंकि इन्हीं से आपके घर का गुजर बसर हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये काम और ज्यादा बढ़े और आप इससे और अधिक लाभ कमाए। आपसे इतनी बात हूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक्स मैम।
2: किसान भाइयों, अभी आपने नारियल सुपारी और पशुपालन से जुड़े किसान भाई श्री देवेन जी से की गई ये बातचीत सुनी और जाना कि वो इन सब कार्यों से किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं। और भाइयों, इतनी बातों और जानकारियों के बाद अब कुछ मनोरंजन हो जाए, तो मनोरंजन के बहाने आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का।

साथियों, गीत आपने सुना, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसे जरूर पसंद किया होगा। अब लीजिए ये जानकारी, जिसका विषय है मुर्गियों में रानी खेत की बीमारी। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुर्गी पालन एक बहुत ही अच्छा एवं लाभप्रद व्यवसाय है, जिसे कि आप सह व्यवसाय के रूप में खेती बाड़ी के साथ अपना सकते हैं। इससे जहां आपको अंडे व मांस की प्राप्ति होगी, जो कि पौष्टिकता से भरपूर होते हैं, वहीं इससे अतिरिक्त आय भी मिलती है। मुर्गी पालन से आपकी व आपके परिवार की श्रम शक्ति का भी भरपूर उपयोग होता है। जैसा कि अन्य व्यवसायों के साथ होता है कि सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सफलता के लिए आपको उन कारणों और बचाव के विषय में जानना जरूरी है, जो कि असफलता की ओर ले जा सकते हैं। किसान भाइयों, मुर्गी पालन में सफलता के लिए आज हम आपको मुर्गियों की एक भयंकर बीमारी रानीखेत के संदर्भ में जानकारी देंगे। रानीखेत मुर्गियों का एक भयंकर रोग है और कभी कभी इस रोग से 100% मुर्गियों की मृत्यु भी हो जाती है। ये रोग प्रायः सभी उम्र की मुर्गियों में पाया जाता है, परंतु चूजे मुख्यतः इस रोग का शिकार बनते हैं। चूजों में जब ये रोग लग जाता है तो वे बहुत ही सुस्त दिखाई देते हैं, उनके पंख मुड़ जाते हैं और आंखें बंद हो जाती हैं, उनको भूख नहीं लगती तथा सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज़ भी निकलती है। साथ ही चूजे मुंह से जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, उन्हें बुखार आ जाता है और प्यास बहुत लगती है। इसके साथ साथ उन्हें पीले रंग के दस्त भी लग जाते हैं। प्रायः ऐसे चूजे गर्दन हिलाते नजर आते हैं और रोग बढ़ने से चूजे मरने लगते हैं। इस रोग की मामूली आक्रमण से जो चूजे बच जाते हैं, उनके डैनों, टांगों व गर्दन को लकवा मार जाता है और मुर्गियां इस रोग से ठीक हो जाने के बाद स्वस्थ दिखाई देती हैं, लेकिन वे आमतौर पर अंडे नहीं दे पाती। कभी कभी मुर्गी की गर्दन पीछे की ओर मुड़ जाती है। रोग की भयंकर अवस्था में चूजों में इस बीमारी के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं और वे मरने लगते हैं, लेकिन प्रौढ़ पक्षी प्रायः देर से मरते हैं। किसान भाइयों, ये रोग विषाणुओं के कारण होता है और ये रोग मुर्गी घरों में जंगली चिड़ियों, कबूतरों, नई मुर्गियों, कौओं या देखभाल करने वाले व्यक्तियों के माध्यम से पहुँचता है। झुंड में एक बार रोग के आरंभ हो जाने के बाद ये रोगी पक्षियों की थूक, बीड़ आदि से स्वस्थ

0: पक्षियों में तेजी से फैलता है। इस रोग से मुर्गियों के बचाव का एकमात्र तरीका इसकी रोकथाम का ही है, क्योंकि एक बार इस रोग के लग जाने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है। इस रोग से बचने का एकमात्र इलाज है चूजों को रानीखेत का टीका लगवाना। आप एक दिन के चूजों को RD1 और 8 सप्ताह के चूजों को RD2 का टीका लगवाना ना भूलें। यदि किसी चूजे या पक्षी में कोई असाधारण बात दिखाई पड़े तो उसे तुरंत ही समूह से अलग कर दें और ऐसे पक्षियों को किसी सूखे स्थान पर रख दें। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि स्वस्थ पक्षी उसके संपर्क में ना आए। जिस बाड़े में ये रोग फैला हो उसे कुछ महीनों के लिए खाली छोड़ दें और बाद में कीटाणुनाशक दवाओं की छिड़काव के बाद ही वहां मुर्गियों को रखना शुरू करें और पक्षियों के मरने पर उन्हें दूर गड्ढों में दबा दें। मुर्गियों में रानीखेत की बीमारी के संदर्भ में अभी आपने ये जानकारी हासिल की।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: और भाइयों, अब आपको इंतजार होगा आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर जानने का। तो हम आपको बता दें कि हमारा आज का प्रश्न था, पेन्योर किस फसल की किस्म है। तीन विकल्प भी हमने आपको बताए थे, काली मिर्च, लौंग या फिर दालचीनी। और इस प्रश्न का सही जवाब है, पेन्योर काली मिर्च की एक किस्म है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी किसान भाइयों ने सही उत्तर के माध्यम से ये जानकारी हासिल कर ली होगी।

और साथियों, बातों और जानकारियों की किसानवाणी की इस संध्या को अब हम यहीं पर देते हैं विराम, क्योंकि समय हमें और अनुमति नहीं दे रहा। अब मुलाकात होगी अगले अंक में कुछ और नई बातों, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, और फिलहाल के लिए शिवानी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
1: अभी किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे किसानवाणी। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शामे बहार।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था फिल्म सापित से। समीर के शब्द थे, संगीत दिया था चिरंतन भट्ट ने। आइए अब सुनते हैं पाठशाला फिल्म में सलीम मर्चेंट को। गीत व संगीत हनीफ शेख का है।

तरुण सागर, अलिसा मेंडोना और ले मेंडोना की आवाज़ों में सुनते हैं हाउसफुल फिल्म का एक गीत। समीर की रचना है, संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने।

जाने कहाँ से आई है। इस फिल्म में सुनते हैं राशिद अली को। इस गीत को लिखा है समीर ने, तर्ज बनाई है साजिद वाजिद ने।

शान का गाया अब सुनते हैं मुस्कुरा दे जरा फिल्म का ये गाना। महबूब के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है रंजीत बरोत ने।

अभी आपने मुस्कुरा के देख फिल्म का ये गाना सुना, और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए रावण फिल्म का ये गाना, रेखा भारद्वाज और जावेद अली की आवाज़ों में। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है ए आर रहमान ने।

श्रोता हूँ, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम में बहार संपन्न हुआ। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष कार्यक्रम। सात बजकर 30 मिनट पर युवाणी के तहत कार्यक्रम होगा देश की शान। रात 8 बजकर 15 मिनट पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। रोजगार समाचार का समय रहेगा रात 8 बजकर 30 मिनट। रात 10 बजे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं। रात 10 बजे ही FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए छाया गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। कल प्रातः 5 बजकर 55 मिनट पर एग्री टिप्स कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा सब्जियों में एकीकृत पोषक तत्व। जलियानों का यात्रा कार्यक्रम आप सुनेंगे 6 बजकर 10 मिनट पर। 6 बजकर 15 मिनट पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा अफसाना शीर्षक पर। रामचरित मानस गान सुनिए 6 बजकर 30 मिनट पर। मौसम की जानकारी कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 6 बजकर 50 मिनट पर। 7 बजकर 15 मिनट पर देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुनिए देश रागनी। 7 बजकर 15 मिनट पर ही FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए भूले बिसरे गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का समय रहेगा 7 बजकर 30 मिनट। सुबह 8 बजकर 30 मिनट पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप रेशमा कविता पौडवाल और जसवंत सिंह की गाई चंद गजलें सुन पाएंगे। 9 बजकर 30 मिनट पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप पद्मा तलवलकर का गायन सुनेंगे। फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा गीत गाता चल सुबह 10 बजे। दिन के 11 बजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 11 बजकर 30 मिनट पर फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रलोक। तेलुगु में दोपहर 12 बजे महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा वनिता वाणी। दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा। दोपहर 1 बजकर 10 मिनट पर महफिल कव्वाली कार्यक्रम में कव्वाल होंगे कलंदर आज़ाद और अजीज नज़ा। दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर बाद 2 बजकर 30 मिनट पर मौसम की जानकारी के बाद हमारे स्थानीय सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर हमारी स्थानीय सभा जारी रहेगी लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स के साथ।

दोपहर बाद 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा, यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी कल शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का समय रहेगा 4:30। 4:40 पर कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिए बहारों की शाम 4:45 पर। शाम 5 बजे तमिल में आप एक ही संगीतकार के कुछ गाने सुन पाएंगे। बंगला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। संध्या 6 बजे कृषि जगत कार्यक्रम में महिला पशुपालक चंपा रानी दास से की गई बातचीत आप सुनेंगे।

0: अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार इस ब्रेक के बाद।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। स्काईरूट एरोस्पेस के संस्थापकों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात कर निजी अंतरिक्ष क्षेत्र का उत्साह बढ़ाया। द्वीप समूह की पक्षी विविधता से परिचित कराने के लिए चिड़िया टापू में रेन फॉरेस्ट बर्डिंग ट्रेल का आयोजन किया जाएगा। और स्वच्छ भारत मिशन के एम्बेसडर नरेश चंद्र लाल ने मोहनपुरा में विद्यार्थियों को खेलों और पुस्तकों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।

सांधे समाचारों के साथ मैं ज्योति लकड़ा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित गठबंधन के अन्य नेता शामिल हुए। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। संसद सत्र के दौरान गठबंधन की एकजुटता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से यह बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम एक की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस प्रकृति की रक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से पृथ्वी को बचाने के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने वर्ष 1997 में आज ही के दिन विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस घोषित किया था। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नागरिकों से हरित और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने का आह्वान

करते हुए कहा कि प्रकृति संरक्षण केवल वन्य जीवों की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि जंगलों, नदियों, स्वच्छ हवा और प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बीच मायाबंदर स्थित महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS की इकाइयों ने आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया। इस अवसर पर महाविद्यालय परिसर में पौधरोपण किया गया और शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए NSS इकाइयों का शुभारंभ भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ RVR मूर्ति के संबोधन से हुई। उन्होंने विद्यार्थियों से NSS के माध्यम से सामुदायिक सेवा में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। NSS कार्यक्रम अधिकारी डॉ कंडी मुद्दू ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय परिसर में लगभग 50 पौधे लगाए गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, रेन फॉरेस्ट बर्डिंग ट्रेल का आयोजन और स्वच्छ भारत मिशन। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग तथा एवियन क्लब के सहयोग से 1 अगस्त को सुबह 8 बजे चिड़िया टापू स्थित जैविक उद्यान में रेन फॉरेस्ट बर्डिंग ट्रेल का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य द्वीप समूह की समृद्ध पक्षी विविधता और प्राकृतिक वर्षा वन पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना तथा इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों को पक्षी दर्शन कराने के साथ साथ स्थानीय व प्रवासी पक्षी प्रजातियों तथा जैव विविधता संरक्षण पर विशेष जानकारी दी जाएगी। निदेशालय ने प्रकृति प्रेमियों, विद्यार्थियों, पक्षी दर्शन में रुचि रखने वालों और पर्यटन से जुड़े लोगों से कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। इच्छुक प्रतिभागी सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय में पंजीकरण करा सकते हैं। राजधानी श्री विजयपुरम स्थित चिन्मया मिशन में गुरु पूर्णिमा के साथ साथ व्यास जयंती का आयोजन कल शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत भजन और सत्संग से होगी। इसके बाद श्री गुरु पादुका पूजा का आयोजन होगा और अंत में प्रसाद वितरण किया जाएगा। द्वीप समूह के स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर और पद्मश्री से सम्मानित नरेश चंद्रलाल ने आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मोहनपुरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों और शिक्षकों से संवाद किया तथा विद्यालय परिसर और समाज में स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया। श्री लाल ने विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों से दूर रहने, खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने तथा नियमित रूप से पुस्तकें पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रभारी शिक्षिका सुनीता शर्मा भी मौजूद थीं। ICAR केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान श्री विजयपुरम ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत प्राकृतिक खेती में उपयोग होने वाले जैविक उत्पादों की तैयारी पर कल 1 दिवसीय व्यवहारिक प्रशिक्षण आयोजित किया। यह कार्यक्रम संस्थान के क्षेत्रीय और तकनीकी कर्मचारियों के लिए आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत और नीमास्त्र को वैज्ञानिक तरीके से तैयार करने तथा खेतों में इनके उपयोग के बारे में बताया गया। प्रतिभागियों को इन्हें तैयार करने की प्रक्रिया, आवश्यक सामग्री की मात्रा और प्रभावी उपयोग के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम का आयोजन संस्थान के वैज्ञानिकों के समन्वय और निदेशक डॉ जय सुंदर के मार्गदर्शन में किया गया। डिगलीपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 4 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सिविल, CSE और गणित विषयों के प्रवक्ता पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित होगी। वहीं 5 अगस्त को इसी समय सिविल और CSE के लैब

0: तकनीशियन पदों के लिए परीक्षा होगी। 6 अगस्त को सिविल और सीएससी प्रवक्ता पदों के लिए सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। पंजीकृत अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे। अंडमान निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन डॉ बीसी रॉय ट्रॉफी 2026-27 के लिए जूनियर बॉयज टीम के चयन के लिए ट्रायल आयोजित करेगा। चयन ट्रायल 2 अगस्त को सुबह 9 बजे से बर्डलाइन मैदान में होगा। ट्रायल में वही खिलाड़ी भाग ले सकेंगे जिनका जन्म वर्ष 2011 और 2012 के बीच हुआ हो। एसोसिएशन ने सभी जिलों, विभागों, क्लबों और गांवों से पात्र खिलाड़ियों को निर्धारित तिथि पर चयन ट्रायल के लिए भेजने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। स्काईरूट एरोस्पेस के संस्थापकों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात कर निजी अंतरिक्ष क्षेत्र का उत्साह बढ़ाया। द्वीप समूह की पक्षी विविधता से परिचित कराने के लिए चिड़िया टापू में रेन फॉरेस्ट बर्डिंग ट्रेल का आयोजन किया जाएगा। और स्वच्छ भारत मिशन के एम्बेसडर नरेश चंद्र लाल ने मोहनपुरा में विद्यार्थियों को खेलों और पुस्तकों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:15 हुए हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। पहले मौसम। कोलकाता स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 28 जुलाई से कल 29 जुलाई 2026 तक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के तट तथा उससे सटे समुद्री क्षेत्रों में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने तथा इसके 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ने की संभावना है। समुद्र में तेज हवाएं और खराब मौसम की स्थिति बनी रहने की आशंका है। अतः सभी मछुआरों को आज से 29 जुलाई 2026 तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। ये थी मौसम की जानकारी। आइए अब सुनते हैं जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमवी हटबे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल बुधवार 29 जुलाई को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और ये जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और ये जलयान अगले दिन 30 जुलाई को सवेरे 7 बजे रंगत से छूटकर उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और ये जलयान दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी बाराटांग कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप की यात्रा पर जाएगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए प्रस्थान करेगा तथा 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल बुधवार 29 जुलाई को दोपहर

बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से अपनी यात्रा आरंभ करेगा और शाम 4:30 पर यह जलयान शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी रानी लक्ष्मी कल 29 जुलाई को शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप की यात्रा पर जाएगा और यह जलयान अगले दिन 30 जुलाई को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे।

अब सुनिए जन सूचनाएं। गैर कानूनी कृत्यों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैरकानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है। नंबर है 112 03192-232100, 03192-233077 और 03192-232400। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।

जन सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:20 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, दिल ने फिर याद किया।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था फिल्म गुड्डू से। आवाज़ें थी कुमार सानू और देवकी पंडित की। नौशाद अली के संगीत निर्देशन में तैयार इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने। आइए अब सुनते हैं ज्वाली मुखर्जी और पूर्णिमा को फिल्म जय भारत में। इंदिवर की रचना है, विद्यासागर ने धुन बनाई है।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 7:30 हुए हैं। अब सुनिए युवाणी कार्यक्रम।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 28 जुलाई है और आज के दिन विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन का उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों, जैव विविधता, जल, वन और स्वच्छ वातावरण के संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। बढ़ता प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और प्लास्टिक कचरा आज भी पूरी दुनिया के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह वृक्षारोपण करे, जल एवं ऊर्जा का संरक्षण करे, एकल उपयोग प्लास्टिक से दूरी बनाए तथा स्वच्छता को अपनी आदत बनाए। प्रकृति केवल मानव की आवश्यकता नहीं बल्कि समस्त जीव जगत के अस्तित्व का आधार है। यदि हम आज पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य दे सकेंगे। पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिवस का संकल्प नहीं बल्कि जीवन भर निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है।

दोस्तों, इसी के साथ ही आज ही के दिन विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी मनाया जाता है। यह दिवस नोबल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारुक ब्लमबर्ग की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की और उनका टीका विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दिवस का उद्देश्य हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समय पर जाँच, उपचार और टीकाकरण को प्रोत्साहित करना है। हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो यकृत यानी लिवर को प्रभावित करती है और समय रहते उपचार न मिलने पर गंभीर रूप ले सकती है। स्वच्छ भोजन, सुरक्षित रक्त, संक्रमित सुइयों से बचाव तथा हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण इस रोग की रोकथाम के प्रभावी उपाय हैं। जागरूकता, नियमित जाँच और समय पर उपचार से हेपेटाइटिस मुक्त समाज का निर्माण संभव है। दोस्तों, आज मंगलवार है और आज के दिन हम आपके लिए लाते हैं कार्यक्रम देश की शान।

दोस्तों, हमारे देश में फिल्मों का चलन काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। लोग फिल्म देखते हैं तो उन फिल्मों के गाने उनके दिलों में घर कर जाते हैं। वो सारे गीत हर भाव को व्यक्त करते हैं, खुशी, गम, दर्द, भक्ति, देशभक्ति आदि। इन गीतों से हमारा एक रिश्ता बन जाता है। यही गीत हम अपने दुखों और खुशियों में सुनते व गाते हैं, और ऐसे ही कई गीतों को गाकर कई गायक लोकप्रिय हुए हैं। और आज हम एक ऐसे ही गायक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी आवाज और अपने गाए गीतों से सबके मन को मोहित कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपनी मधुर आवाज के लिए लोकप्रिय सोनू निगम के बारे में।

दोस्तों, सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। उनके पिता प्रसिद्ध गायक आगम कुमार निगम, जिनके कई गीतों ने उन्हें लोगों के बीच लोकप्रिय कर दिया था, और उनकी माता का नाम था शोभा निगम। सोनू 4 साल की उम्र से

ही गाते आ रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले अपने पिताजी के साथ मंच पर मोहम्मद रफ़ी का गीत क्या हुआ तेरा वादा गाया था। तभी से शादियों और पार्टियों में वे अपने पिताजी के साथ गाने लगे। कुछ और बड़े होने पर वे संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगे। 19 वर्ष की आयु में गायन को अपने व्यवसाय बनाने के लिए वे अपने पिताजी के साथ मुंबई आ गए। उन्होंने शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां से शिक्षा ली और उन्होंने गायन का ज्ञान हासिल किया। शुरू के कुछ सालों में सोनू को अपना नाम बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने मुख्य रूप से टी सीरीज की रफ़ी की यादें नामक एल्बमों के लिए मोहम्मद रफ़ी के गाने गाना शुरू किया। टी सीरीज़ के मालिक गुलशन कुमार ने उन्हें ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का अवसर दिया। पार्श्व गायक के रूप में सोनू ने अपना पहला गीत 1990 में फिल्म जन्म के लिए गाया था, जो कि कभी औपचारिक तौर पर दर्शकों के सामने आ नहीं पाई। सोनू ने अपना पहला गाना 1992 में दूरदर्शन के धारावाहिक तलाश के लिए गाया और इसके बाद 1993 में आई फिल्म आ जा मेरी जान के गाने ओ आसमां वाले ज़मीं पर से बॉलीवुड में कदम रखा। उनको गायकी में तब सफलता प्राप्त हुई जब उन्होंने टी सीरीज़ के साथ मिलकर गीत अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का गाया था, जो 1 जनवरी 1993 को रिलीज़ हुआ था। फिर इसी गीत को 1994 में आई फिल्म बेवफा सनम में भी शामिल किया गया और उसी फिल्म में सोनू ने और भी कई गीत गाए थे। इसके बाद उन्होंने 1994 में ही जी टीवी के प्रसिद्ध कार्यक्रम सारे गामा का संचालन शुरू किया और कुछ ही दिनों में यह कार्यक्रम बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया। उनकी अगली सफलता 1997 में आई बॉर्डर फिल्म के संदेश से आते हैं गाने के रूप में हुई और 1999 में उनकी पहली सोलो एल्बम दीवाना आई, जिसमें उन्होंने प्रेम गीतों में अपना जौहर दिखाया और आज भी यह एल्बम भारत की सबसे सफल एल्बमों में से एक है। दोस्तों, सोनू को हमेशा ही मोहम्मद रफ़ी की परछाई कहा जाता था, लेकिन उन्होंने यह कहलाना तब छोड़ दिया जब साल 1999 में ही उन्होंने नदीम श्रवण द्वारा संगीत निर्देशित परदेस फिल्म का गीत ये दिल दीवाना गाया। तब से उन्होंने अपनी गायकी की एक अलग पहचान बना ली और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गए।

दोस्तों, इस गीत के बाद सोनू भारतीय संगीत जगत के एक प्रमुख हस्ती बन चुके थे। उन्होंने कई फिल्मों में पार्श्व गायन किया और हर तरह के गीत गाने के साथ साथ उन्होंने अनेक भाषाओं में भी गीत गाए हैं, जैसे कि कन्नड़, आसामी, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू, नेपाली, छत्तीसगढ़ी, मलयालम और मराठी। दोस्तों, इसी के साथ ही सोनू ने अभिनय में भी अपना हाथ आजमाया और फिल्म बेताब में वे बाल कलाकार के रूप में दिखे थे। इसके बाद उन्होंने जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, काश आप हमारे होते और लव इन नेपाल जैसी फिल्मों में भी काम किया। दोस्तों, अगर हम उनके अभिनय करियर को हटा भी दें तो भी सोनू ने एक से बढ़कर एक गाने गाए हैं। इनमें संदेश आते हैं, कभी खुशी कभी गम, दो पल रुका, अपने तो अपने होते हैं, सूरज हुआ मध्यम, कभी अलविदा ना कहना और कल हो ना हो जैसे ज़बरदस्त गाने शामिल हैं। और इन सभी गानों के अलावा सोनू निगम द्वारा गाए हर गीत का एक अलग महत्व है और सभी गीत अपने आप में ही हिट हैं। दोस्तों, सोनू को फिल्मफेयर, जी सिने, आईफा, आईटीए समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है और साथ ही 2022 में गायन के क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, यकीनन ही सोनू निगम हमारे देश की शान है और उनके गाए गीत केवल हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी गाए जाते हैं और कई विदेशी

गायक सोनू निगम को अपना सिद्धांत मानकर उनके जैसा गाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, शायद ही हम में से ऐसा कोई होगा जो सोनू निगम के गीतों के साथ जुड़ ना पाता हो। वे अपनी आवाज़ से हम सभी को अपने गीतों से बांध कर रखते हैं और हम उनकी आवाज़ की मधुरता में मुग्ध हो ही जाते हैं।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। अब अगला कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल ये विधेयक सदन में पेश किया था। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को सदन में पेश करते हुए कहा कि ये विधेयक सरकार की छात्रों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इसे भारतीय संसद के इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है। कांग्रेस नीत पूर्ववर्ती सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। श्री सिंह ने 2009 में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा, 2011 में अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, इसी साल पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2010 में उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी और 2012 में एम्स नई दिल्ली की प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सूची लंबी है। उन्होंने कहा कि सरकार को लगा कि इस संबंध में एक व्यापक कानून की आवश्यकता है। श्री सिंह ने कहा कि देश में उच्च शिक्षा में परीक्षाओं का प्रबंधन करने के लिए एनटीए जैसी एजेंसी की सिफारिश 1992 और 2010 में भी की गई थी, लेकिन पता नहीं इस पर विचार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का गठन 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ही किया था। श्री सिंह ने कांग्रेस सदस्यों की ओर इंगित करते हुए कहा कि आपका अधूरा काम मोदी सरकार ने पूरा किया। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ सरकार 2024 में ही विधेयक लाई थी, जिसे जून 24 में लागू भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में आज के संशोधन विधेयक के माध्यम से कड़े प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का भी जिक्र किया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले की थी। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये फास्ट ट्रैक अदालतें घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के 5 महीने के भीतर आखिरी निर्णय देंगी, जो इस संशोधन विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि सदस्य सरकार की प्रतिबद्धता का इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इस विधेयक के साथ ही कानून मंत्री ने यह प्रस्ताव भी रखा है कि विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने की प्रक्रिया साथ ही शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में

विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें पहले ही गठित की जा चुकी हैं और आने वाले दिनों में बाकी जगहों पर भी इनकी स्थापना होगी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने लोकसभा में परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया था। श्री गोगोई ने दावा किया कि 2024 में लाया गया मूल कानून पेपर लीक रोकने में नाकाम रहा था और नया प्रस्तावित कानून भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 2024 में जब इसी तरह का विधेयक लाया गया था तब सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए दावा किया था कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन उसी वर्ष नीट यूजी पेपर लीक मामले में 45 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से अधिकतर को जमानत मिल चुकी है। उनका कहना था कि मामले के कथित मास्टरमाइंड को भी जमानत मिल गई। श्री गोगोई ने आरोप लगाया कि जब 2024 में पेपर लीक का मामला सामने आया था तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इससे इंकार किया था और इस बार भी उनका रवैया वैसा ही रहा। कांग्रेस सांसद ने संसद परिसर में भाजपा के कुछ सदस्यों द्वारा श्री प्रधान का स्वागत किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि संसद में पूर्व मंत्री का ऐसा स्वागत किया गया मानो वो पाकिस्तान से जंग लड़कर आए हों। श्री गोगोई ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 लोगों को हटाए जाने की बात कही गई जबकि संस्था में स्वीकृत पदों की संख्या 34 है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण देने की मांग की। उन्होंने ये भी सवाल किया कि जब एनटीए के महानिदेशक को बदल दिया गया तो चेयरमैन को क्यों बरकरार रखा गया। उन्होंने कहा कि भाजपा से संबंधित एक वैचारिक संगठन के लिए शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण है और विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां इसी सोच के तहत की जा रही हैं। श्री गोगोई ने संशोधन विधेयक के प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि केवल जुर्माने की राशि बढ़ाने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। उन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं को अपने भविष्य की चिंता है और इसी कारण वे सड़कों पर उतरे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि गृहमंत्री को सदन में आकर इसका जवाब देना चाहिए कि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चलाने, लाठियां भांजने और आंसू गैस के गोले दागने का आदेश किसने दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। सुश्री स्वराज ने प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं पर दुख जताते हुए कहा कि जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में अनियमितता होती है तो उसका असर केवल अभ्यर्थी पर ही नहीं बल्कि उसके माता पिता पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर अपराध है, इसलिए इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं उनकी सरकार की नीयत है, इसलिए ये संशोधन विधेयक लाया गया है। भाजपा सांसद ने कहा कि वर्तमान में परीक्षा माफिया संगठित होकर अंतर्राज्यीय आपराधिक नेटवर्क बन गया है, ऐसे में ये विधेयक क्षेत्राधिकार की उलझन को सुलझाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ ही और विपक्ष के लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक की समस्या केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। सुश्री स्वराज ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट को सच माने तो विपक्षी दल शासित राज्यों और 2014 से पहले कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान 22 बार पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। श्री यादव ने जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि सरकार झुकती है, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री जब लोकसभा में लौटे तो सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया, इससे हमें कोई शिकायत नहीं है। माननीय सदस्यों को कितनी राहत मिली होगी, एक प्रधान जी को हटाकर अपने भाजपा ने प्रधानमंत्री बचा लिया। सपा नेता ने कहा कि नई पीढ़ी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भाजपा को झुकने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सरकार घबरा जाती है और डर जाती है तब मांगों को स्वीकार कर लेती है। श्री यादव ने कहा कि ये ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें बच्चों के साथ उनके माता पिता भी जुड़ गए थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखने का उल्लेख करते हुए कहा कि डर लगता है कि कहीं पूरी सरकार को आउटसोर्स न कर दिया जाए। श्री यादव ने कहा कि सरकार ने शिक्षा और शैक्षणिक संस्थाओं को एक रंग में रंगने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रही है ताकि पिछड़े, दलित और गरीबों के बच्चे न पढ़ पाए। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 26,386 प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने सलाहकार बदल लेने चाहिए और

यदि सरकार जेन जेड पर भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। उन्होंने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को इसका जवाब देना चाहिए कि किसके आदेश पर छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य ने कहा कि ये देश सांसदों की जागीर नहीं बल्कि जनता की अमानत है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के सवालों का जवाब दे। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि आज युवाओं को लगने लगा है कि मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि इसमें गंभीर खामियां हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और परिवार कर्ज लेकर पढ़ाई करा रहे हैं। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो इस विधेयक का समर्थन करते हैं और कड़ा कानून जरूरी है, लेकिन अगर व्यवस्थागत विफलताओं से परीक्षाओं में गड़बड़ी होती रही तो ये पर्याप्त उपाय नहीं है। श्री बनर्जी ने 2024 के लोक परीक्षा कानून में लाए गए संशोधनों के संदर्भ में कहा कि सजा बढ़ाने से सरकार की 12 वर्ष की अक्षमता खत्म नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार नए भारत की बात करती है। आज का युवा पूछता है कि अगर ये नया भारत है तो प्रश्न पत्र लीक क्यों हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल के कार्यकाल में प्रश्न पत्र लीक के एक भी मामले में कोई दोष सिद्धि नहीं हुई है। द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सांसद दयानिधि मारन ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि नीट परीक्षा की शुरुआत से लेकर अब तक उनके राज्य तमिलनाडु समेत पूरे देश में अनेक छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह इस बात को दर्शाता है कि नीट परीक्षा से क्या हालात हो गए हैं। मारन ने कहा कि सरकार मुख्य मुद्दे का समाधान नहीं कर रही है। मुद्दा कानून का नहीं बल्कि नीट का है, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने नीट लाकर गलती की तो आप इसे थोपकर दूसरी गलती कर रहे हैं। नीट हमारे बच्चों पर मत थोपिए, इसे रोकिए। उन्होंने कहा कि द्रमुक ने तमिलनाडु में नीट का शुरू से विरोध किया है और लगातार इस बात को कहती रही है कि नीट नहीं चाहिए। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके अलावा उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की 2 रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखवाने के बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू किया। उन्होंने असम से यूपीपीएल के रवंगवरा नारजारी को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री नारजारी ने बोडो भाषा में बोलना शुरू किया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए। उन्होंने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। हंगामे के कारण नारजारी की बात सुनी नहीं जा सकी। विपक्षी सांसदों, खासकर वाम दलों के सदस्यों ने मांग की कि छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह सदन में बयान दें। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जहां इस मांग का विरोध किया, वहीं विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने मांग की कि अमित शाह गृहमंत्री हैं और उन्हें सदन में आकर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कुछ विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते थे, लेकिन शोर शराबे के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दे उठाने को कहा, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के लिए कहा। हंगामे के बीच ही श्री मांझी ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक एमएसएमई क्षेत्र के विकास की गति को देने के उद्देश्य से लाया गया है। इस विधेयक के तहत 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। श्री मांझी ने कहा

0: कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उनके अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य उद्योग जगत के बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार इस क्षेत्र की इकाइयों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। श्री मांझी द्वारा विधेयक पेश करने के बाद उपसभापति हरिवंश ने एक और विधेयक सदन में पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे को देखते हुए उन्होंने उनसे कहा कि आप सदन नहीं चलने देना चाहते। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। उच्च सदन की बैठक अब कल सुबह 11 बजे होगी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:15 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में पहले सुनते हैं अभिनेत्री फिल्म का एक गीत जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर ने। मजरू के शब्द हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

0: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners, starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
1: श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और मुकेश की आवाज़ों में दो जासूस फिल्म का एक गीत। गीत व संगीत रविंद्र जैन और हसरत जयपुरी के हैं।

दुश्मन है ये जो मिलावट करते हैं, इनकी बदौलत कितने लोगों से पहले मरते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ाना सबसे बड़ा सवाब है। कौन है सच्चा कौन है झूठा, हर चेहरे तनखाब है। ना सोचो ना समझो, ना संभल के रहियो भी। ना सोचो सोचो ना समझो सम

0: कार्यक्रम चित्रपट संगीत संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए रोजगार समाचार। अंडमान एवं निकोबार केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मिशन तथा राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत अनुबंध के आधार पर विभिन्न पदों के लिए योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों में MIS डेटा एनालिस्ट का एक पद, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के दो पद, अकाउंटेंट का एक पद तथा HMIS असिस्टेंट के 6 पद शामिल हैं। चयनित अभ्यर्थियों को MIS डेटा एनालिस्ट पद के लिए 40,000 प्रतिमा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एवं अकाउंटेंट पद के लिए 30,000 प्रतिमा तथा HMIS असिस्टेंट पद के लिए 20,000 प्रतिमाह का समेकित मानदेय प्रदान किया जाएगा। नियुक्ति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता प्रत्येक पद के अनुसार अलग अलग निर्धारित की गई है। MIS डेटा एनालिस्ट पद के लिए BE, BTEC या MCA या MBA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट अथवा समकक्ष योग्यता के साथ संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव आवश्यक है। MPH मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ अथवा समकक्ष योग्यता भी मान्य है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री संबंधित तकनीकी योग्यता तथा TIA एवं MCASA क्षेत्र का अनुभव अपेक्षित है। अकाउंटेंट पद के लिए MCOM डिग्री के साथ कंप्यूटर का ज्ञान या BCOM डिग्री के साथ लेखा एवं वित्त क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। HMIS असिस्टेंट पद के लिए BSc कंप्यूटर साइंस सूचना प्रौद्योगिकी अथवा समकक्ष विषय में स्नातक डिग्री तथा संबंधित अनुभव आवश्यक है। सभी पदों के लिए आयु सीमा 21 से 60 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन शैक्षणिक योग्यता अनुभव एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 है। साक्षात्कार संबंधित जानकारी अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही 22 जुलाई का द डेली टेलीग्राम भी देखा जा सकता है। इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronks. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronks owners starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
0: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम गौरव गान।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
2: यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस गवर्नमेंट।
3: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
2: टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस।
1: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
4: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
1: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने

0: विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
1: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
2: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गयी। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
3: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपा पोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
3: ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पे सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
0: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देशभर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य

0: जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
1: राज्यों की यात्राओं के दौरान युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियां के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में येलो अलर्ट लागू था, लेकिन शाम तक विभाग ने 4 और जिलों को अलर्ट की सूची में शामिल कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम्पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की 1 तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त जबकि दूसरा 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले वाचाघात एफेसिया के लिए मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। ये एक संगीत आधारित उपचार है जो स्ट्रोक के बाद ठीक हुए लोगों को दोबारा बोलने की स्थिति में लाने में मदद करता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10

0: YouTube channel News on AIR Official. You may share your feedback about the program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
1: Money Talk. Manthan.
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए खेलो इंडिया से भारत में खेल परिदृश्य में आए बदलाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं भारतीय खेल प्राधिकरण में उपनिदेशक एस हिमा बिंदु। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
3: हिमा बिंदु जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: बहुत धन्यवाद
3: जी। हिमा जी, कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले एक बहुत ही ऐसा प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जहां पर हम भारत को खेल की दुनिया में अग्रणी बनाने की बात करते हैं। सरकार के लक्ष्य की अगर बात करें तो 2036 तक भारत को दुनिया के अग्रणी खेल देशों में शामिल करने और 2047 तक शीर्ष 5 देशों में शामिल करने का विजन हम लेकर के चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी आज की नीतियां हैं और जिस तरह से हमारी जो तैयारियां चल रही हैं वो किस दिशा में जा रही हैं और अभी तक कहां तक हम पहुंच चुके हैं और आगे हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या अवसर आने वाले हैं?
4: जी, अगर हम नीतियों के बारे में बात करें तो पिछले साल में खेलो भारत नीति लागू हुआ है और इसका अगर हम इसमें क्या है अगर इसमें देखा जाए तो उसमें 5 स्तंभ की बात होती है। विश्व मंच पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास के लिए खेल, सामाजिक विकास के लिए खेल और खेल को जन आंदोलन रूप में कैसे बनाना है और शिक्षा के साथ खेल को कैसे हमको एकीकरण करना है, ये हमारा जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है इसी से बहुत स्पष्ट रूप में हमारे सामने रहती है। अगर अवसर की बात करें, हम ये सब तो हासिल करने की जरूरत है, इस सबको सशक्तिकरण करने की जरूरत है, मजबूत करने की जरूरत है। इसके साथ साथ हमको इस दिशा में हम जब जाते हैं तो बच्चों को खेल से जुड़ने का प्रयास हम सबको करना है और ये सिर्फ खेल से नहीं और खेल और शिक्षा को एकीकरण से ही ये हो सकता है। उनको जब सुविधा सही टाइम पे देंगे, सही टैलेंट खोजना, हमको टैलेंट पूल को ज्यादा से ज्यादा बड़ा बनाना, यही हमारा सबसे ज्यादा अवसर है।
3: जी हिमा जी, खेलो इंडिया की जब हम बात करते हैं तो ये जो गेम्स हैं, जो खेल खेले जाते हैं खेलो इंडिया के अंतर्गत, वो स्कूल, यूथ, यूनिवर्सिटी, पैरा, विंटर, बीच, वाटर स्पोर्ट्स, ट्राइबल गेम्स तक पहुंच चुके हैं, तो ये जो विस्तार दिया जा रहा है इन खेलों का, तो इससे आपको लगता है कि भारत की खेल संस्कृति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है और इसका सकारात्मक असर लगातार हमारे जो युवा प्रतिभा है, खेल प्रतिभा है, उस पर पड़ रहा है?
4: अगर हम खेलो इंडिया प्रतियोगिता की बात करें, ये सबसे सक्सेसफुल मैकेनिज्म रहा है स्पोर्ट्स के प्रति। इसमें बच्चों को एक तो खेल के ऊपर इंटरेस्ट जागरूक करने के लिए और खिलाड़ियों को एक मंच देने के लिए इसमें नेशनल लेवल का कंपटीशन किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे खेलो इंडिया प्रतियोगिता कहाँ कहाँ पे हुआ है देश में, नॉर्थ में उत्तर प्रदेश से लेके, जम्मू कश्मीर से लेके बिहार, पूर्वोत्तर राज्य में हुआ है, दक्षिण भारत देश में हुआ है, पूरे देश में पहला हुआ है खेलो इंडिया प्रतियोगिता। इसमें बहुत सारे बच्चों को मौका मिला है कि अंतरजातीय स्तर पे एक प्रतियोगिता कैसे किया जाता है। जब बच्चे उस कंपटीशन को देखेंगे उनको एक झिझक नहीं रहता है जब वो इंटरनेशनल कंपटीशन में जाते हैं। ये खेलो इंडिया प्रतियोगिता का सबसे बड़ा योगदान है। इसके अलावा अगर हम पूरे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में अगर खेलो इंडिया गेम्स का योगदान देखेंगे, ये स्पोर्ट्स इवेंट जब भी होता है कोई भी राज्य में, उस राज्य ये सोचता है कि हम इवेंट्स के बाद क्या करें, मतलब हम लेगेसी प्लानिंग कैसे करना चाहिए, तो उसमें शिक्षा स्पोर्ट्स एक्सलेंस की तरफ जाती है। सपोज इवेंट से हम शुरू करेंगे पर वो जाता है एक्सेलेंस के ऊपर और मेडल्स की तरफ जाता है, तो इवेंट्स, स्पोर्ट्स इकोनॉमी, स्पोर्ट्स एक्सेलेंस, ये सब खेलो इंडिया प्रतियोगिता के द्वारा हासिल हुआ है।
3: हिमा जी, आप भारतीय खेलों की अगर हम बात करें और खेलो इंडिया की बात करें तो बहुत ही नजदीकी से आप इन्हें देखती हैं, तो आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि ये जो योजना रही इसने वास्तव में ग्रामीण और जो छोटे कस्बों की बात करते हैं, छोटे शहरों की बात करते हैं, दूर दराज के इलाकों की बात करते हैं, वहां पर नई प्रतिभाओं को खोलने के अवसर हमें ज्यादा प्राप्त हुए, वहां से बहुत सारी प्रतिभाएं निकल करके सामने आई हैं?
4: खेलो इंडिया का अगर आप उसका लक्ष्य देखेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, एक है मास स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन और फिर स्पोर्ट्स एक्सेलेंस है, तो इसके द्वारा खेलो इंडिया में अगर आप ग्रास रूट्स को लेकर बात करेंगे, हम पूरे

0: देश में 1000 के ऊपर खेलो इंडिया सेंटर है और
1: जी
0: इसमें 28,000 से ज्यादा बच्चे इसमें प्रशिक्षण को प्राप्त हो रहा है उनको। और अस्मिता लीग्स में महिला खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है, ये सिर्फ महानगरों में नहीं छोटे शहर में भी होने लगा है। इसके अलावा जो खेलो इंडिया गेम्स का ब्रांड है वो गांव तक आजकल पहुंच गया है। तो खेलो इंडिया में सिर्फ महानगर के बच्चे नहीं है, इसमें गांव वाले और छोटी शहर बच्चों को भी एक मौका मिल रहा है, एक पहचान मिल रहा है, एक दिशा भी मिल रहा है और सुविधा भी मिल रहा है। अगर हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखेंगे तो जिला स्तर पर भी बहुत स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा गया है। सो खेलो इंडिया और को ग्रास रूट्स में स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। हमने जो सक्सेस देखा है खेलो इंडिया के द्वारा ग्रास रूट्स में, उससे ये अंडरस्टैंडिंग पे आ गए है कि हमको इसको और मजबूत करने की वजह से और रिजल्ट हमको आ सकता है।
1: यदि मैं आपसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की बात करूं, जिसे हम सभी टॉप्स के नाम से जानते हैं, तो ये खिलाड़ियों को विदेशी प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। ये भी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। तो इस तरह की जो योजना है, तो भारत के ओलंपिक और पैरालंपिक प्रदर्शन में काफी बदलाव हमें देखने को मिला है बीते कुछ समय में। तो इस योजना की आज की स्थिति और इसके फ्यूचर के बारे में, और लोगों को इससे कितना फायदा हो सकता है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: हम टारगेट ओलंपिक स्कीम जो होता है इसके द्वारा खिलाड़ियों को कस्टमाइज सपोर्ट दिया जाता है। इसमें हम एक्सपर्ट कोचेस, खेल उपकरण, खेल विज्ञान विशेषज्ञ, फॉरेन एक्सपोजर वगैरह दिया जाता है। और इस एथलीट को, जो चुने हुए एथलीट्स है, इनको बहुत क्लोज मॉनिटरिंग किया जाता है। आपने जैसे बताया कि इसका फल हम सबको पिछले 10 साल में ओलंपिक्स में, आशियाई खेल में, राष्ट्रमंडल खेल में देखने को मिला है। इसमें हमको आगे ओलंपिक एस्पिरेशंस के हिसाब से अगर सोचे,
1: जी
0: ओलंपिक आकांक्षा के हिसाब से हम अगर सोचे तो और सपोर्ट करने की जरूरत है और उसी दिशा में बहुत पहल लिया जा रहा है। एंड डिलीवरी मैकेनिज्म जो है टॉप्स का, उसको मजबूत करने की प्रयास निरंतर जारी है।
1: हिमा जी, आज के समय में भारत की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। तो ये जो युवा शक्ति है, और वो ऐसा युवा जो स्कूल और कॉलेज से निकल रहा है, वहां से पास आउट हो रहा है, तो खेल की संस्कृति की ओर भी आकर्षित हो रहा है। इसमें और बेहतर बनाने के लिए ऐसी क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, युवा जो है वो खेल संस्कृति का लाभ उठाए, और जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं, खासतौर पे ओलंपिक हो, पैरालंपिक हो या फिर विश्व कप हो, इन सब में पार्टिसिपेट करने के लिए वो किस तरह से प्रयास कर सकते हैं?
0: हम अगर युवाओं के बारे में बात करें तो दो चीज हमेशा याद में आता है कि एक है डेमोग्राफिक डिविडेंड और दूसरा है उनका फुल पोटेंशियल तक पहुंचाने का प्रयास जो है वो जरूरी है, ये दोनों। और इसमें अगर खेल में हम बात करें, हमेशा पॉपुलेशन की बात होती है, पॉपुलेशन के हिसाब से मेडल कितना आना चाहिए इसका बात होती है, पर हमको ये मिसिंग लिंक जो है कि इस पॉपुलेशन में कितने बच्चे खेल पा रहे हैं और वो युवा होने के बाद कितने साल खेल पा रहे हैं और खेल के ऊपर उनका समय कितना है, न्यूट्रिशन कैसा है। तो हम खेल को सिर्फ मेडल के रूप में नहीं, खेल को हम अगर जब सेफ सिक्योर लाइवलीहुड के रूप में, खेल को जब हम फिटनेस के रूप में, खेल जीवन के भाग के रूप में जब देखेंगे हम, तब ज्यादा से ज्यादा युवा और बच्चे हम खेल की तरफ आएंगे और तब हमको ऑटोमेटिकली मेडल ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। हमारा जो भी पहल है खेलो इंडिया के द्वारा या टॉप्स के द्वारा, फिट इंडिया के द्वारा, स्कूल्स के साथ जुड़े रहने का जो प्रयास है, ये सब उसी के लिए है।
1: जी हेमा जी, इस वक्त कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जा रहे हैं, और 2026 का ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, इसमें 124 सदस्यीय भारतीय दल उतरा है। हमारी शुरुआत भी बड़ी अच्छी हुई, स्वर्ण पदक के साथ में हमारी शुरुआत हुई है, और मीराबाई चानू ने लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स का स्वर्ण पदक जीता, इतिहास रचा है। तो ये जो सफलता हमें मिल रही है, इस सफलता के लिए आपको क्या लगता है कि अभी जो कुछ समय से हमारी योजनाएं खेल के लिए चल रही हैं और जो तैयारियां हमारी हैं, उनका कितना योगदान है?
0: हमारा तैयारी ये एक दिन का रिजल्ट नहीं है, ये एक स्टेक होल्डर का रिजल्ट नहीं है, ये बहुत सारे स्टेक होल्डर जब कोलैबोरेशन में और कन्वर्जेंस में काम किया है उसी का नतीजा है ये आज हम देख रहे हैं। और ये जैसे हमने डिस्कस किया कि जैसे इंटरमीडिएट और ग्रास रूट लेवल पे खेलो इंडिया काम कर रही है, टॉप्स एलीट लेवल के लिए काम कर रही है, और अगर हम टोक्यो ओलंपिक्स, एशिया गेम्स ये सब हम देखें तो एक माहौल बन चुका है देश में। और नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, हॉकी टीम, ये सब एक माहौल बन चुका है और सक्सेस इज कंटेजियस आज के दिन में स्पोर्ट्स में, और एक को देख के एक और बढ़कर एफर्ट लगा रहे हैं, ये सबको ओवरऑल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, स्पोर्ट्स साइंस, एक्सपर्ट कोचेस, ये सब मदद

0: हो रहा है, और आगे हम ये उम्मीद है कि हम इससे और गुना मेडल देश के लिए आएगा, उसी के लिए प्रयास है।
1: हिरमा जी, एशियाई खेलों की अगर हम बात करें तो साल 2014 में भारत ने 57 पदक जीते थे और 2023 में रिकॉर्ड 107 पदक हासिल किए, लगभग दोगुने तक हम पहुंच चुके थे। तो क्या ये बेहतर खिलाड़ियों का परिणाम आप मानती हैं या जो हमारी देश की सशक्त हुई खेल नीति है उसका असर है?
0: दोनों को क्रेडिट देने की जरूरत है इसमें,
1: जी
0: क्योंकि जब आपको इसमें अगर एक ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट अगर देखा जाए, तो जब नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक मिला टोक्यो ओलंपिक्स में,
1: जी
0: तब उसके बाद एक उम्मीद आई है कि एथलीट्स में कि हम भी कर सकते हैं, और
1: जी
0: एक माहौल भी बन गया है कि पूरे देश में कि अगर नीरज चोपड़ा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का स्ट्रेंथनिंग करना, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में उनको मजबूत करना, खेल विज्ञान विशेषज्ञों को बहुत ताकत देना, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स को ताकत देना,
1: जी
0: एथलीट का कस्टमाइज सपोर्ट देना, टॉप्स के द्वारा हमारा सेंटर्स में नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ जुड़ के काम करना, तो ये कन्वर्जेंस, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स और जो हम मजबूत करने का जो भी एफर्ट्स है, इसी का नतीजा है।
1: हेमा जी, अभी आपने ओलंपिक का जिक्र किया तो मेरे जहन में एक बात आती है कि अगर हम पैरालंपिक का यहाँ पर जिक्र करते हैं तो भारत ने 2016 में 4 पदक जीते थे पैरालंपिक में, वहीं 2024 में 29 पदक जीते। ये बहुत बड़ी असाधारण उपलब्धि रही है भारत के लिए। तो पैरा खिलाड़ियों का जो ये पहले की तुलना में बेहतर हम परिणाम देख रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है उन अवसरों की ओर इशारा करता है जो उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आगे की अगर योजना की हम बात करें तो किस तरह के और बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं?
0: अगर हम पैरा खेल की बात करें, ये तो मानना पड़ेगा कि पैरा एथलीट्स जो है हमारा, ये सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं, हम सबके लिए भी प्रेरणादायक है।
1: जी
0: हम अगर जब वो मेडल जीतते हैं, जो उनका चैलेंजेस पार करके जो मेडल जीतते हैं, वो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। उसको रिकॉग्नाइज करते हुए जो सपोर्ट उनको मिल रहा है हमको टॉप्स के द्वारा, टॉप्स आजकल पैरा एथलीट्स भी टॉप्स में है,
1: जी
0: और हमारा खेलो इंडिया एथलीट्स जो हमारा उत्कृष्ट एथलीट्स को हम जो सपोर्ट करते हैं उसमें भी पैरा शामिल है। इसके अलावा डेडिकेटेडली खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी हुआ है, उसमें से भी बच्चे निकल के आ रहे हैं। इनफैक्ट उस खेलो इंडिया एथलीट्स 6 एथलीट्स पदक जीते हैं पैरा ओलंपिक गेम्स में,
1: जी
0: तो हमको ये आगे जाके पैरा खिलाड़ी जो भी है उनको प्रोत्साहन करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा क्लासिफायर्स को बनाने की जरूरत है, एक्सपर्ट कोचेस को इसमें बनाने की जरूरत है हमको, और बहुत सारे फैसिलिटीज। हम खेलो इंडिया में ये भी स्टेप लिया है कि अगर कोई प्राइवेट एकेडमी एक्सेसिबिलिटी के साथ है, वो
1: जी
0: पैरा फैसिलिटी के लिए अक्रेडिटेशन लेना चाहती है, वो भी सुविधा आज के लिए अवेलेबल है। तो हम पैरा अक्रेडिटेड एकेडमीज, जो पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन हो सकता है, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है आज के दिन में। हम उनके लिए ज्यादा प्रशिक्षण केंद्र अवेलेबल करने की जरूरत है, इससे बहुत ज्यादा मेडल आने की चांसेस है।
1: जी हेमा जी, बिल्कुल कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। देश में खेल संस्कृति विकसित करने पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है और कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता रहे हैं जो बहुत ही छोटी जगहों से आए हैं हमारे सामने। तो इनकी सफलता और भारत की मौजूदा खेल नीति और भविष्य की बात करें तो इनके बारे में आपके विचार क्या होंगे?
0: जो बच्चे आते हैं खेल में, उनके लिए एक भूख होता है, एक लक्ष्य होता है, बहुत बच्चों के लिए एक अपवर्ड मोबिलिटी की मौका होती है स्पोर्ट्स। तो हमको इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की तरफ बहुत बच्चों को हमको नर्चर करने की जरूरत है। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे खेल में आना चाहिए, वो तभी हो सकता है जब एजुकेशन और स्पोर्ट्स का एकीकरण हो जाता है।
1: जी
0: और हमको देश में बहुत सारे प्रशिक्षित कोचेस का जरूरत है।
1: जी
0: हमको पीईटीस है, पीईटीस को हम ग्रास रूट कोचेस को डेवलप करने की जरूरत है, वो हमारा देयर और आईज ऑन द ग्राउंड, तो ये
1: जी
0: प्रशिक्षित कोचेस को बनाने का बहुत जरूरत है। और जैसे बताया था कि टैलेंट खोज और टैलेंट डेवलपमेंट सही टाइम पे करे, सही तरीके से करे, तब हमको ज्यादा से ज्यादा मेडल प्राप्त करने का अवकाश है।
1: जी
0: और हम सबको और ज्यादा कन्वर्जेंस करने की जरूरत है, इनके लिए जो भी सुविधा स्कीम कानून मजबूत करने की जरूरत है, वो सबकी दिशा में ही प्रयास और सोच दोनों जारी है।
1: हेमा बिंदु जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद निखिल।
2: अभी आप सुन रहे थे खेलो इंडिया से भारत में खेल परिदृश्य में आए बदलाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थीं भारतीय खेल प्राधिकरण में उपनिदेशक एस हेमा बिंदु। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी

0: सुन सकते हैं।
1: मंथन।
2: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। अब सुनिए व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेश से आते हैं।

आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें हमारा व्हाट्सएप नंबर, ताकि आप अपने पसंद के गाने हमारे कार्यक्रम के माध्यम से सुन पाएं। और जो भी हमारे नए श्रोता हैं, इस कार्यक्रम को आज ही सुन रहे हैं, उनको भी हम बता दें हमारा व्हाट्सएप नंबर। तो जल्दी से नोट कीजिए, हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर 9474234000। और लिख भेजिए कार्यक्रम का नाम, संदेश से आते हैं, फिल्म का नाम, गीत के बोल, अपना नाम व पता ज़रूर लिखें। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज, जिसे हमें भेजा है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता गौड़ तथा इनके मित्रगण हैं संजय, संदीप, अनिल, राधा और दर्शन जी।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म ज्वेल थीप से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने और इस गीत की फरमाइश की है दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान साइमा नवाज हसन बाबू अहद मिफ्रा बेबी चाहत और सादिया जी ने।

अगला गीत है फिल्म ये रात फिर ना आएगी से, और इस गीत के लिए हमें फरमाइश आई है पंजाब से। गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, बेबी वमिका और वानी थांदी जी का।

नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नुहांकर, निर्मला, विशाल और इसी गीत के लिए मलकापुर मध्य प्रदेश से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मुहेरकर जी ने फरमाइश की है मेरे महबूब फिल्म के इस गीत के लिए।

अगला गीत है फिल्म दाग से, और इस गीत के लिए हमें फरमाइश आई है सतना मध्य प्रदेश से, उमंग मलिक, आकांक्षा माही और कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर जी का। ये गीत साथ ही हमारे अन्य श्रोता भी सुनना चाहते हैं जिन्हें हम ये गीत सुनाते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: परेला टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से, बिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष, और जिला रतलाम मध्य प्रदेश से ही जगदीश धाकड़, नयाम, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी जी को। तो चलिए सुनिए

श्रोताओं, चलते चलते अब हम आपको बता दें मौसम का हाल। कोलकाता स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 28 जुलाई से कल 29 जुलाई 2026 तक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के तट तथा उससे सटे समुद्री क्षेत्रों में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने तथा इसके 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ने की संभावना है। समुद्र में तेज हवाएं और खराब मौसम की स्थिति बनी रहने की आशंका है, अतः सभी मछुआरों को आज से 29 जुलाई 2026 तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात्रि के 10:31 हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा यहीं पर समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज विविध भारती FM पर कल सुबह 6 फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अथा 684 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रवण माह की सातवीं तिथि, तदन अनुसार 29 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:28 हुए हैं। हमारी आज की पहली स्थानीय प्रसारण सेवा में हम अपने सभी श्रोताओं का अभिवादन करते हैं।

0: श्रोताओं, सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए अनमोल विचार।
1: मनुष्य की पहचान उसके रूप से नहीं बल्कि उसके आचरण से होती है। अच्छा आचरण वो गुण है जो बिना कुछ कहे ही हमारे संस्कारों और व्यक्तित्व का परिचय देता है। विनम्रता, ईमानदारी, अनुशासन और दूसरों के प्रति सम्मान, ये अच्छे आचरण के आधार हैं। यदि हमारा व्यवहार अच्छा है तो हम हर जगह सम्मान और विश्वास प्राप्त करते हैं। आपका आचरण ही आपका सबसे प्रभावशाली संदेश है।
0: ये था अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए संवेद स्वरों में मातृ वंदना।